हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए जाते हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलावारु चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा।

0: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलावारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है फूलों से दोस्ती करें। आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
2: बहुत से इंसान जिंदगी भर कांटों की, दुखों की, तकलीफों की ही बात करते रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई अर्थ नहीं होता कि पृथ्वी पर कांटे ही नहीं, पुष्प भी खिले हुए हैं। दुख है तो सुख भी है, तकलीफ है तो इलाज भी है। वे लोग एक तरफ देखने के आदि हो जाते हैं और जीवन रूपी रस से हाथ धो बैठते हैं। जीवन रसपूर्ण है। परमात्मा के लिए कहा भी गया है, रसो वैसे, यानी वह परमात्मा रस स्वरूप है। तो फिर उसी से बना संसार रसहीन कैसे दिखने लगता है? जरूर ही चीजों को लेकर हमारी समझ में कोई खोट पैदा हो गया है और ये खोट है अपने आप को नकारात्मक बना लेना। कोई भी बात हो, ऐसे लोग हर आनंद का कचरा करते हुए माहौल को दुखद, तनावपूर्ण और निकृष्ट बना देते हैं, जबकि जीवन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ वैविध्यपूर्ण तरीके से हो रहा है। बस हमें देखने की कला आनी चाहिए, वैसी आँख होनी चाहिए जैसी वॉन गोग के पास थी। चीन के सम्राट ने महान चीनी चित्रकार वॉन गोग को बुलाया

0: और विविध फूलों से सजा अपना बगीचा उसे दिखाते हुए बोला, इसकी तस्वीर बनानी है, क्या आप बना पाएंगे? जी जरूर, पर इसके लिए मुझे महीने भर का समय चाहिए। राजा ने उदार मना होकर वान गोग को एक महीने का समय दे दिया और महल में निवास स्थान बना दिया। वान गोग रोजाना उठता, बागीचे में टहलता, फूलों से बात करता और आराम करता। उसने कैनवास को छुआ तक नहीं था। यूं करते करते 3 महीने बीत गए। राजा पूछ पूछ कर परेशान हो गया, पर वान गोग चित्र नहीं बना रहा था। आखिर राजा ने सोचा, यह काम इससे नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे विदा कर देता हूं। तभी वान गोग हाजिर हो गया। बोला, राजन, मैं इस बगीचे का सौंदर्य कैनवास पर नहीं उतार सकता, असमर्थ हूं। यहाँ के फूल इतने जीवंत हैं, जब तक आधा फूल भी नहीं बनता, पूरे फूल की तस्वीर और गंध बदल जाती है। आप कुछ भी कहें, मैं चित्र नहीं बना सकता। इनका चित्र बनाकर तो इनकी जीवंतता को नष्ट ही कर दूंगा। राजा वान गोग से संतुष्ट हुआ और उसे उचित आदर देकर विदा किया। वान गोग के अनुसार परमात्मा की सृष्टि इतनी सुंदर है कि उसे चित्र में नहीं आंका जा सकता। तो जब हमारे चारों तरफ इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा हो, तब हमें जीवन को नकारात्मक तरीके से जीने का क्या अधिकार है कि हम उसे जंजाल बना बैठे? लेकिन गलती से गलत संगत में बैठ जाने से धीरे धीरे वैसे ही विचार हमारे भीतर कौंधने लगते हैं और हम अपने जीवन को उसी कौंध में देखा करते हैं। आपके चारों तरफ फूल है। वान गोग की तरह जिंदा आंखों से सृष्टि को देखो, फिर महसूस करो कि जीवन का असली आनंद क्या है और वो आपसे क्या कह रहा है। हम जब एक फूल के सौंदर्य को देख रहे होते हैं तो फूल भी हमें देख रहा होता है। जब हम फूल से बात कर रहे होते हैं तो फूल भी हमसे बात कर रहा होता है। ये वार्तालाप परस्पर होता है। जितनी गहरी आपकी मोहब्बत होगी, उतना ही गहरा संवाद आ जाता है। और जीवन क्या है? विभिन्न प्रकार के रसों का एक महान क्रीड़ा स्थल। आइए इस क्रीड़ा स्थल में आकर निराशावादी दृष्टिकोण छोड़ें और परस्पर को स्वीकार करते हुए सकारात्मक दृष्टि से जीवन को लें, ताकि ये जीवन हमेशा आपको हाथों हाथ लेता रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे फूलों से दोस्ती करें विषय पर आज का विचार, आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाना चाहे तो मिलाइए, सुबह के ठीक 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आनंद कुमार और साथियों का गाया हुआ ये भक्ति गीत।

अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और साथियों का गाया हुआ ये भजन। अगला भक्ति गीत सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में।

चंदनदास के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 253 से दोहा संख्या 255 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन। मुख्य गायन स्वर है रविंद्र साठे का।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे।

राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनिवाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। मिनी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। समय याद रखिएगा रात 10 बजे और रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे। ये दोनों

कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुगम संगीत का समय रहेगा शाम 7:45 और लोक संगीत रात 8:30 पर। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हम करेंगे शाम 7:00।

0: युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे हमारे केंद्र से शाम 5:05 पर और शाम 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। बहने सुनेंगे महिला जगत कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। सिंधी कार्यक्रम दिन में 12:10 पर, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर के आमिर चैनल से किया जाएगा। दिन में 2:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। अलावा इसके फिल्म संगीत दिन में 11:00 कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, और सुबह 10:00 सुनिएगा नई फिल्मों से कुछ फिल्मी गीत। बच्चे सुनेंगे मुकुल कार्यक्रम सुबह 9:30 पर, और सुबह 9:10 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी पॉडकास्ट पीपल्स पद्मोन आकाशवाणी। इसका प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। और सुबह की सभा में 9:30 पर सुनने न भूलिएगा कार्यक्रम एलडी बीकाना का 6वां अंक। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और जन जागरूकता पर आधारित विशेष मासिक कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष सुंथार से ली गई भेंट वार्ता। इनसे बातचीत करेंगी श्रीमती कविता वर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। समय याद रखिएगा सुबह 8:30 कार्यक्रम रहेगा एलडी बीकाना। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावरू चैनल से बोल रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी अपनाएं।
1: किसान भैया राम राम। आज बात कर रहा पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी रे बारे में। कटाई रे बाद रे मैंने जो कि खेती री उपज है बीरो हैंडलिंग करनो, बीरो भंडारण करनो, बीरी पैकेजिंग करनी, और बाद रे मैंने बिने बाजार तक पहुंचानो यानी कि वितरण करनो, वितरण रे बाद रे मैंने बिक्री। यानी कि कहने रे मतलब है कि खेती रे मैंने कटाई सु लेर बिक्री तक जका काम है, इर मैंने कई वैज्ञानिक और कई इंजीनियरिंग सिद्धांत है बियरो अगर खेती रे मैंने अनुप्रयोग कर लेवे, या दूसरे शब्द में कहा कटाई रे बाद रे मैंने अगर पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी ने अपना ले, तो ना सिर्फ फसल रे गुणवत्ता जकी है बिर मैंने सुधार हो जावे, बल्कि आपारे आमदनी रे मैंने 10-30% तक री बढ़ोतरी हो सके है। सागे सागे अनाज रे अपव्यय यानी कि नुकसान ने भी बचावे, खाद्य सुरक्षा के नी भी आपाने ले चाले। तो बात करा आज पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी रे बारे में। अबार तक जको है कटाई रे बाद रे जकी प्रथा है बिर मैंने थोड़ो सिक सुधार करने रही, दूसरो रूप है पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी। फसल री कटाई सो लेर फसल री खपत तक ताजे फल, ताजे सब्जियां, अनाज इन्हें जको है गुणवत्ता पूर्वक बनावण राखने वास्ते आप प्रौद्योगिकी अपनाई जा करे। इरो महत्व ओ है के अगर पौधे सु हैंडलिंग करा, भंडारण करा, तो बिर मैंने अगर प्रौद्योगिकी वह तो आपरो अनाज, आपरी फसल, आपरी सब्जियां, बागवानी जका उत्पाद है खराब को नहीं वे, और बाजार में ने चोखो मूल्य मिल जावे। भंडारण रे बारे में तो आप सब जानो ही हो, लेकिन भंडारण रे

0: अलावा भी घनी चीजा है जैके सु आपा आमदनी रे मैंने बढ़ोतरी कर सका। ज्या की बात करा अगर कोई भाई रो टमाटर खेत है तो टमाटर ने आलू वाले दिन बोरिया ने मैंने कोरी भर सके बिर वास्ता जरूरी है कि टमाटर ने कैरेट में रखी जाए तो भी सुखा है कि टमाटर आप सुरक्षित रह सी। तो आ एक छोटी सी दिखने वाली चीज भी पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक है कि टमाटर ने राखनो किया। बिर बाद रे मैंने आप यू बड़ी बात करा कि टमाटर ने बाजार में मैंने बेचने गया पर कोई कारण भाव चोखा कौन मिल रहा या बरसात रो मौसम आ गयो बाजार तक पहुंच ही कोनी पा रहा तो वो टमाटर खराब नहीं हो जाए इर वास्ते बिर उपयोग करनो कई उपयोग करनो के खन ही सोस बनाने री अगर आप कोई कारखानो लगा ला या गांव रा चार लोग मिलर लगा ला तो इसी स्थिति रे मैंने जो टमाटर खराब हो रही है वो सोस रे मैंने उपयोग आ सके आ भी एक पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी रो भाग है। कटाई रे बाद रे मैंने जखे खेती रो उत्पाद है बे गुणवत्ता बनानो बिरी जीवन रे मैंने सुधार करनो बिर स्वाद रे मैंने पोषण रे मैंने रंग रे मैंने गुणवत्ता जकी है बरकरार राखनो ई तकनीक रो नाम ही पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक है। भारत जको है लगभग 52 तरह रा मसाला बनाया करे है या उगाया करे है और बिरबाद रे मैंने न सिर्फ देश रे मैंने ए मसाला काम आवे बल्कि यही मसाला जको है विदेश रे मैंने भी जावे विदेश रे मैंने लोग याने चाव सुलवे पण अगर सावचेती सु यार उपयोग करे तो इसी स्थिति रे मैंने ई मसाला री गुणवत्ता जकी है आ बणियो नी रहे। और जका औषधीय पौधा है फल है फूल है इन्हें भी अगर वैज्ञानिक तरीके से सार संभाल रखा तो ए लंबे समय तक सुरक्षित रह सके है। ज्या की कुछ उत्पाद ऐसा है जका ने कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत है ज्या की आलू हो कोल्ड स्टोर में रख सो और कोल्ड स्टोर में रखने के बाद मैंने कई महीना तक आलू ने काम में लियो जा सके। ये जगह कही है कि प्याज है इन्हें रखने की अलग तकनीक हो सके सगड़ा रे हर पौधे रे हिसाब से हर फसल रे हिसाब से भी यार एक तकनीक हो अगर भी तकनीक ने काम में लेनो ही पोस्ट हार्वेस्टिंग है। अगर आप हैंडलिंग पहले के रख रखाव रहा सही तरीका जान ला तो जल्दी से जगह है पौधे री जड़ा या अंकुरण जो भी है या मेरो जो को बिकन नालो भाग है वो खराब को नहीं है बाजार है मैंने आपूर्ति श्रृंखला बनी उड़ी रहे और किसान ने फायदो और जनता ने फायदो के जनता ने कोई चीज री आपूर्ति बनी उड़ी रहे। किसान रे लाभ रे मैंने भी पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक बा सुधार करे किसान रे लाभ रे मैंने सुधार उसी तो देश ने भी फायदो है देश ने विदेशी मुद्रा मिले आयात रे मैंने और निर्यात रे मैंने जो संतुलन है इन्हें बनाने वास्ते भी जरूरी है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक अपनावा। ग्रामीण समुदाय रे आर्थिक आधार रे मैंने मजबूती लाने वालों काम तो है ही है सागे सागे वो जो को है पौधे की गुणवत्ता सुरक्षित भंडारण और ब्रांडेड खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सगड़ा तक बनाने वास्ते भी आ तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है इरवा से जरूरी है। थोड़ा सिक आप जागरूक हो और जितनी भी तकनीक हो सके पहले तो आप देखो कि आप कहीं फसल उगा रही हो फसल रे सारू ज्या अड़ी हुए बिर हिसाब से पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक अपना सको। छोटो सी उदाहरण है चावल रे अगर सीधा बेचना चाहो तो चोखो नजर फुलिया बनार बेच सको इरा दूसरा उत्पाद बने बे बनार बेच दो ऐसा ही पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक रा एक भाग है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी अपनाएं। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सतीश दहरा का गाया हुआ ये लोक भजन।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, किरणें फूट चुकी हैं, चिड़ियों की चहचहाट से ये सुबह चहक उठी है और प्रकृति ने एक नए दिन को हमें दिया है और ये दिन बेहद खूबसूरत सा तोहफा भगवान ने हमारी झोली में डाल दिया है। एक ऐसा दिन जो नई उम्मीदें, नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आया है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि एक शानदार सुबह की परिभाषा क्या है। तो साथियों, शानदार सुबह वो नहीं जो सूरज के उगने से होती है, बल्कि शानदार सुबह वो होती है जो हमारे भीतर एक सकारात्मक सोच का सूरज उगने से होती है। आज हम इस शांत और ताजा सुबह में आइए आपसे मिलकर अपने मन के भीतर झांकते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमारे विचार पूरे दिन की हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। साथियों, हमारा ये जो मन है ना, बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अभी पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसमें चिंताओं या गिला शिकवा या कोई नकारात्मकता का कांटेदार बबूल बोते हैं या फिर उम्मीद, विश्वास और

सकारात्मकता के महकते हुए गुलाब लगाते हैं। मनोविज्ञान भी ये कहता है कि सुबह उठने के बाद के शुरुआती कुछ पल, कुछ मिनट हमारे अवचेतन मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारे पूरे दिन के मिजाज का रिमोट कंट्रोल बन जाता है। अगर हम सुबह उठते ही दुनिया भर की उथल फुथल फालतू की खबरें या मोबाइल पर दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान होने लगे तो मन में भी अनजाने सा एक तनाव बैठ जाता है। और इसके विपरीत अगर हम सुबह की शुरुआत एक गहरी और सुकून भरी सांस लेकर इस खूबसूरत जीवन के लिए उस ऊपर वाले का और इस कुदरत का शुक्रिया अदा करें तो हमारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। इसी को कहते हैं अपने मन को सही दिशा देना। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार एक रागीर ने एक मूर्तिकार को देखा जो बहुत लगन से एक पत्थर को तराश रहा था। रागीर ने पूछा कि भाई, इस बेजान पत्थर में तुम क्या ढूंढ रहे हो? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं इसमें कुछ ढूंढ नहीं रहा, इसके भीतर एक सुंदर मूरत पहले से ही मौजूद है। मैं तो बस इसके ऊपर जो जमी हुई फालतू की परतें हैं और धूल है वो हटा रहा हूं। जी हां साथियों, ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, खुशियां, शांति, सकारात्मकता, ये सभी बातें हमारे भीतर पहले से मौजूद है। बस परिस्थितियों की जो धूल है ना हमारे मन पर जमी, उसे हमें अपनी सकारात्मक सोच की छेनी हथौड़े से रोज सुबह हटाना पड़ता है। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का नियम है, लेकिन पॉजिटिव सोच का मतलब यह कतई नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो भी होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उससे कुछ ना कुछ बेहतर ढूंढ निकालेंगे, कोई ना कोई सीख जरूर लेंगे। तो क्यों ना आज हम एक छोटा सा नियम बनाएं, जैसे ही सुबह हमारी आंखें खुले सबसे पहले अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाएं, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता। साथियों, खुद से कहें कि आज का दिन मेरा है और आज मैं कुछ नया सीखूंगा और आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने सुबह के चाय के कप में घुलने मत दीजिए। याद रखिएगा, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसी ही ये दुनिया आपको नजर आएगी। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच और नई उम्मीद के साथ कदम बढ़ाते हैं आज के एक शानदार पल और शानदार गीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: जब सु...

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, जब हम सुबह की शुरुआत में सकारात्मक सोच और जीवन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर इतिहास के पन्नों को पलटना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आज है 19 जुलाई और आज का ये दिन हमारे देश के आर्थिक इतिहास को एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनाता है। आज ही के दिन को हम बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस यानी बैंक नेशनलाइजेशन डे के रूप में मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह इस भारी भरकम शब्द का हमारे आम जीवन से क्या लेना देना। तो साथियों, इसका सीधा संबंध हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। आज से ठीक 57 साल पहले यानी 19 जुलाई 1969 को देश की तत्कालीन सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया था। उस दौर में बैंक सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों या फिर अमीर लोगों की तिजोरियों तक सीमित हुआ करते थे। एक आम किसान, छोटा दुकानदार, मजदूर या गांव में रहने वाला कोई भी आदमी बैंक के भीतर जाने से कतराता था, लेकिन इस फैसले ने बैंकों के दरवाजे देश के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी खोल दिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बैंकों की शाखाएं शहरों से निकलकर गांवों, कस्बों और खेतों तक पहुंच गई। हमारे देश के किसानों को, छोटे व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को और युवाओं को अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने की जगह मिली और साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोन या ऋण की सुविधा भी मिलने लगी। देखा जाए श्रोताओं, तो यह फैसला एक तरीके से सकारात्मक सोच और बड़े विजन का नतीजा ही था। जब तक हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक देश की तरक्की मुमकिन नहीं। आज हम जो जनधन खाते, डिजिटल इंडिया या हर हाथ में बैंकिंग की सहूलियत देख रहे हैं, उसकी नींव आज के दिन 19 जुलाई 1969 को रखी गई थी। तो आज ऐतिहासिक दिन है, आइए हम सभी बैंक कर्मियों और इस व्यवस्था से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करें जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं।

दोस्तों, सुबह की शुरुआत बहुत प्यारी बातों के साथ, सकारात्मकता, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात, ऊर्जा की बात, लेकिन आप जानते हैं, एक स्वस्थ मन, एक मजबूत देश, एक सुरक्षित भविष्य तभी मुमकिन है जब हमारा आस पड़ोस साफ सुथरा और सेहतमंद

इसलिए आइए इस पावन सुबह में एक मिलकर आवश्यक एक संकल्प लें और एक कदम बढ़ाएं इस नारे की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम अक्सर कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन यह अच्छी सेहत हमें मिलेगी कहां से? इसकी शुरुआत होती है हमारे घर के आंगन से, हमारी गली से, हमारे मोहल्ले से। जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं तो हम केवल गंदगी से दूर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन बीमारियों को भी दूर भगा रहे होते हैं जो हमारे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। सफाई कोई ऐसा काम नहीं जो साल में सिर्फ किसी एक खास दिन से किया जाए, या ये काम ऐसा है जो हमें अपने रोजमर्रा की आदत होनी चाहिए, बनानी चाहिए। सोचिए, हम जैसे सुबह उठकर अपने तन को साफ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, नाश्ता करते हैं, ठीक वैसे ही यदि हम सब मिलकर अपनी गली, अपने दफ्तर और सार्वजनिक जगहों को साफ रखने की सभी मिलकर जिम्मेदारी उठा ले, तो सोचिए हमारा देश कितना सुंदर हो जाएगा। सूखा कचरा सब जगह आजकल, वो दो कलर के डब्बे लगे हुए हैं, नीले डब्बे में लिखा हुआ है उसके ऊपर गीला कचरा, हरे डब्बे में। हालांकि ये कदम छोटा सा है, लेकिन देश के सभी नागरिक इस छोटे से कदम को अगर एक साथ उठा लें तो ये एक क्रांति बन सकता है। सफाई के प्रति हमारी यही सकारात्मक सोच हमें बीमारियों से बचाएंगी, डॉक्टरों के खर्च को रोकेंगी, हमारे आसपास परिवार, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी को साफ सुथरा और उसके लिए सांस लेने के योग्य माहौल देगी। सच मानिए दोस्तों, जब हमारा ये शहर, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा भारत स्वच्छ होगा, तभी हमारा हर भारतीय स्वस्थ होगा।

कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपकी सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया। अब आज्ञा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत राजन साजन मिश्रा की आवाजों में। फिल्म का नाम है सुर संगम।

अभी आपने सुना यशुदास और हेमलता का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था चितचोर। अगला गीत सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह के स्वर में, फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारी चैनल से सुन रहे थे। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: करते हैं वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक

0: संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% है।
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली निम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली निम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव

0: दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की

0: गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया। खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर। गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency reveals that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
2: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year.

0: कंफर्म हो जाए तो पहली बार डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कितनी कितनी अवधि में जांचें करवानी चाहिए?
1: जैसे ही पॉजिटिव आए तुरंत डॉक्टर को सलाह करनी चाहिए। तो इसके अंदर अपन फोलिक एसिड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। फोलिक एसिड की कमी से कई बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, बच्चे के स्पाइन के अंदर ट्यूमर हो जाता है, क्लेफ्ट लिफ्ट हो जाता है। इन सब की प्रिवेंशन के लिए फोलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए तुरंत। तो अपने डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, उसके अंदर थायरॉइड टेस्ट करवाना चाहिए, शुगर टेस्ट होना चाहिए और फोलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अब कोई महिला गर्भवती हो गई है तो उसे कई आवश्यक जांचों की भी जरूरत पड़ती होगी, तो कौन सी ऐसी जांचें हैं जो जरूरी है और गर्भवती महिला को करवानी चाहिए?
1: जैसे ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो फर्स्ट विजिट के अंदर अपने ब्लड ग्रुप करवाते हैं, थायराइड करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं और शुगर करवाते हैं।
0: जी,
1: कई पेशेंट्स होते हैं जैसे अंडरली एज के अंदर डायबिटिक हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, तो हम डायबिटिक के हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। थायराइड होते हैं तो थायराइड का अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आपका पॉजिटिव आता है। थायराइड के अंदर बच्चों के अंदर मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपो मतलब उसका टीएसएच लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो अपन थायराइड की एक डोज से उसको कंट्रोल करके उसका आईक्यू लेवल अच्छा कर सकते हैं।
0: जी,
1: बाकी रूटीन टेस्ट हो जाते हैं, मार्कर टेस्ट होते हैं, एचआईवी एचबीएस एंटीजन, ये रूटीन टेस्ट होते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अच्छा आप अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, ये कब करवाना चाहिए?
1: अल्ट्रासाउंड अपने 15 दिन ड्यू होने पे करवाते हैं, उसमें कार्डियक एक्टिविटी पता चल जाती है 15 से 20 दिन के, 6 to 7 weeks में बच्चे की धड़कन आ जाती है। फिर अपने 3 महीने में करवाते हैं कि बच्चे का हेड बन गया क्या, कुछ डिफॉर्मिटीज होती है 3 months में पता चल जाती है। जैसे एंटी स्कैन करवाते हैं, एंटी स्कैन में डाउन सिंड्रोम के बच्चे अपने को 3 months में 13 weeks में पता चल जाते हैं।
0: जी,
1: तो ये टेस्ट सोनोग्राफी से अपन उसी टाइम बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। ओम्फेनोसील होते हैं, हाइड्रोकेफलिक बेबी होते हैं, कई बार एनेनकेफली बेबी होते हैं, ये अपन डायग्नोसिस 13 weeks पे कर सकते हैं। तो सोनोग्राफी जरूरी होती है 13 weeks पर, 3 months कंप्लीट होने पर।
0: जी जी,
1: उसके बाद में 5 months में कराते हैं Level 2 scan होता है। Level 2 scan में अपने पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है, ब्रेन में कोई सिस्ट तो नहीं है, हार्ट में कोई टॉफ पैथोलॉजी तो नहीं है या कोई अंग में कोई विकार तो नहीं है, तो ये सोनोग्राफी बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा स्कैन करना है, ग्रोथ स्कैन हो जाता है 32 weeks पे, डॉपलर हो जाता है कि पानी की कमी तो नहीं है।
0: जी,
1: वो अपन रूटीन चेकअप में चलता रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कितना जरूरी है, तो जब गर्भवती महिला की बात आती है तो उसके आहार की भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो एक गर्भवती महिला का आहार कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए?
1: गर्भवती महिला अपने को उसके आहार में आयरन और कैल्शियम और फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोलिक एसिड अपने हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर होता है, तो उसका सेवन अधिक करना चाहिए। फिर अपने आयरन की बात करते हैं तो आयरन भी हो गया, अनार हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इनमें केले के अंदर पोटेशियम अच्छा होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, इन सब का प्रॉपर अमाउंट में करना चाहिए। कैल्शियम रिच डाइट अपने मखाने हो गए, बाजरी हो गया, दूध से बनी हुई चीजें हो गई, दूध दही छाछ और पनीर, तो इसमें प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और मल्टीविटामिन ये सब का होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें घी नहीं खाना चाहिए, तो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए Omega-3 fatty acid चाहिए होता है, तो अपना घी और ड्राई फ्रूट्स में मिलता है।
0: जी,
1: तो अपना उस डाइट के अंदर जैसे मॉर्निंग में आप उठे तो ड्राई फ्रूट लें 8 to 10, मखाने ले सकते हैं, फिर दूध लें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के अंदर जैसे अलग अलग कल्चर के हिसाब से अपन उसको ले सकते हैं, कुछ लोग परांठे प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पोहे खा सकते हैं, इडली ले सकते हैं, जैसा अच्छा लगे। फिर दोपहर के खाने के अंदर रोटी सब्जी दाल चावल दही ये ले सकते हैं, और शाम के खाने के अंदर अपने को 1 कटोरी दाल राजमा पनीर, ये सब प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, जो आप सुबह भी ले सकते हो या रात को ले सकते हो, जैसा भी खाना हो तो।
0: जी, तो डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
1: डाइट का बहुत महत्वपूर्ण
0: रोल। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि फोलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, तो ये क्यों दिया जाता है और ये जैसे आप देते भी हैं टैबलेट्स के रूप में, तो कब कितना लेना चाहिए?
1: अपने 90 tablets अपने के पर प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है।
0: जी,
1: फोलिक एसिड तो हम इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं, ये ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। उसके बाद में 3 months के बाद में अपन आयरन और कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें डिफिशियंसी होती है तो उनमें अपन डोज थोड़ा बढ़ाते हैं, और मेंटेनेंस के लिए अपने को 1 tablet ODK की रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन 10 है तो भी आपका जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा तो उसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए जो बॉडी से मदर से लेगी तो अपने को रिक्वायरमेंट

0: जाती है
1: जी।
0: तो ये सप्लीमेंट होता है और अपने डाइट से इतना सप्लीमेंट कई बार हो नहीं पाता, तो 1 टैबलेट आयरन 1 टैबलेट कैल्शियम टिल प्रेगनेंसी तक अपने इसको कंटिन्यू रखना होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, अच्छा ऐसे कौन से जो खाद्य पदार्थ है जिनसे गर्भवती महिला को परहेज करना चाहिए?
0: जैसे अपने लौंग है, इलायची है, अदरक है, पपीता है, ये सब चीजें गर्म चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसे पपीते जैसे सीड्स होते हैं तो पुराने जमाने में उसको अबॉर्शंस के लिए यूज करते थे
1: जी।
0: तो जितना अपन पपीता ज्यादा लेते हैं जिनका यूट्रस वीक होता है तो उनमें अबॉर्शन के चांसेस हो ज्यादा होते हैं
1: जी।
0: जैसे लौंग, इलायची, ये सब गर्म करती है। चाय बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए,
1: फास्ट फूड वगैरह
0: कॉफी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। कॉफी आप 2 कप ले सकते हो, उसके अलावा ज्यादा कॉफी लेते हैं तो कैफीन होता है, उसका ब्रेन के बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है
1: जी।
0: तो जितना टैनिन और कॉफी होता है वो अपने लिए नुकसानदायक होता है। फास्ट फूड अपने अवॉइड करना चाहिए, बाहर का खाना बंद रखना चाहिए। इनिशियली 3 मंथ तक तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है बाहर के खाने से।
1: तो कुल मिलाकर गर्भवती महिला का हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, पानी का भी कोई रोल रहता है या पर्याप्त नींद का भी कोई गर्भवती महिला के?
0: 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए अपने को। पानी से क्या होता है कि अपनी बॉडी क्लीन होती है, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं यूरिन के थ्रू निकलते हैं, तो जितना पानी पियेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग में वैसे भी पानी का लॉस होगा, तो कई लोग पानी नहीं पी पाते, उसमें नारियल पानी ले लो, जूस ले लो, मौसमी का जूस ले सकते हैं, किसी भी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, अपने छाछ ले लो
1: जी।
0: तो प्रेग्नेंट महिला को अपने को रूटीन पानी भी पीना चाहिए और लिक्विड के अंदर जितना भी हो विद शुगर कुछ लेना चाहिए अपने को
1: जी। डॉक्टर साहब, अच्छा एक ये भी भ्रम है कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती है वो योग करे कि नहीं करे, व्यायाम करे तो कितना करे, कितना उनके लिए सुरक्षित है, ये बताएं डॉक्टर साहब आप।
0: देखो, योग अपन कर सकते हैं, जो पहले योगा करते हैं वो लोग अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा कर सकते हैं, जो लोग इनिशियली योग नहीं करते तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि बॉडी उनकी प्रिपेयर नहीं होती। कई बार क्या है, एक्सेसिव योग से अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होता है। यदि आप जैसे एथलीट हो तो आप कंटिन्यू योग और एथलीट्स अपनी सब एक्टिविटी विद प्रेगनेंसी कर सकते हो, तो अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पहले योग नहीं कर रहे थे आज हम योग करेंगे। तो आपको योग को रूटीन लाइफ में लाना है, उसी को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनकी दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, इनको अपन योग एडवाइस नहीं करते, बाकी सबको अपन वॉक और योगा एडवाइस करते हैं, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज, साइड टू साइड एक्सरसाइज और 6 मंथ के बाद स्क्वाट्स एक्सरसाइज हम लोग एडवाइस करते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी। आज का समय जो डॉक्टर साहब है वो बड़ा ही भागदौड़ वाला समय है, तो बहुत सी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तनाव ले लेती हैं और थोड़ा गुस्सा भी उन्हें अधिक आता है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ और बच्चे पर क्या गर्भवती महिला के तनाव का असर होता है?
0: हाँ, तनाव का असर होता है। आजकल क्या स्ट्रेसफुल लाइफ है, वर्क होम का बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए अपने थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा सा योगा करें जिससे इसके तनाव कम हो, स्ट्रेस कम लें। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं इनिशियली 3 मंथ के अंदर, उसको फिर इवनिंग के टाइम अच्छा नहीं लगता, बाहर बैठने का मन करता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन ये रहता है, तो उसमें फैमिली मेंबर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ये चिड़चिड़ापन गुस्सा होना नॉर्मल है, और धीरे धीरे स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा करें और 8 घंटे नींद तो जरूरी है
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब आपका पेशा है, आप बहुत सारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें आप डील करती हैं, तो जब आप तनाव में होती हैं तो आप क्या करती हैं?
0: मैं तनाव में वैसे रूटीन में मेरा योगा का रहता है सेशन, सुबह मॉर्निंग में योगा मैं खुद ही जाती हूँ, संगीत सुनती हूँ।
1: तो कोई आपका पसंदीदा गीत जो हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर सके?
0: हाँ, मैं एक पसंदीदा गीत गुनगुनाती हूँ
1: जी।

0: तो इस गीत के बाद हेल्दी बेगाना का ये अंक निरंतर जारी रखते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष सुथार। डॉक्टर साहब, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि जब यात्रा करनी हो तो गर्भवती महिला के यात्रा करना कितना सुरक्षित है या किन परिस्थितियों में वो यात्रा कर सकती है और नहीं कर सकती है, कितना बचना चाहिए?
1: शुरू के 3 महीने हम लोग मना करते हैं
0: जी,
1: 3 महीने तक, 3 से 6 महीने तक आराम से यात्रा कर सकती है। 6 महीने के बाद में लास्ट के पीरियड के अंदर हम लोग मना करते हैं। शुरू में अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं फर्स्ट 3 महीने के अंदर
0: जी,
1: लास्ट 3 महीने के अंदर कई बार प्रीटम पेन ये सब स्टार्ट हो जाते हैं
0: जी,
1: तो बीच का पीरियड सेफ रहता है,
0: तब कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, और आगे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बात की थी कि आज का जो युग है इलेक्ट्रॉनिक युग है, ऐसे में जो कामकाजी महिलाएं हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करती है, लैपटॉप का इस्तेमाल करती है, मोबाइल के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका भी इस्तेमाल उन्हें करना होता है, तो ऐसे में क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: नहीं, रूटीन में अपना वर्क है तो वो कर सकती हैं
0: जी,
1: तो बीच में अपना इंटरवल ले लेना चाहिए,
0: इंटरवल लेना चाहिए,
1: 2 घंटे का इंटरवल ले लो फिर आप वर्क कर सकते हो, पर अननेसेसरी बहुत ज्यादा अपन ऐसा सोचे कि रील्स देख रहे हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए
0: जी,
1: वर्क आप कर सकते हो, आईज पे स्ट्रेस पड़े तो बीच में आपको इंटरवल लेना चाहिए
0: जी। डॉक्टर साहब एक ये बताएं हमें कि गर्भावस्था के दौरान ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए?
1: दर्द की दवाइयां जो पेन किलर यूज करते हैं अपन वो नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक होती हैं उनमें कैटेगरी चेंजेस होते हैं, ABC कैटेगरी होती है, तो उसके हिसाब से अपने यूज करना चाहिए। इनिशियली 3 मंथ में तो हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं ले
0: जी,
1: तो इसीलिए बाहर का खाना हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि अपने को इन्फेक्शन नहीं हो और अपने को अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। उन मेडिसिन से कई बार अंग विकार हो जाता है, जैसे विटामिन ए जैसे अपन लेते हैं स्किन के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें रेटिनोइक एसिड होता है, तो उसके साथ बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो सकते हैं, और कुछ मेडिसिन होते हैं उसमें हार्ट में एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे डिक्लोफेनेक ज्यादा यूज करें तो ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए
0: जी। तो हम तो यही कहेंगे हमारे श्रोताओं की जो भी आप दवा ले रहे हैं डॉक्टर की देखरेख में ही उस दवा का सेवन करें आप जी। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो गर्भावस्था में खतरे की घंटी हो सकती है, यानी कि ऐसे कौन से लक्षण या ऐसा कौन सा कारण बन जाए कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए?
1: देखो, अलग अलग ट्राइमेस्टर के अलग अलग दिक्कतें होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नीचे पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, या फिर कई बार वोमिटिंग बहुत ज्यादा होना। अपन वोमिटिंग को कई बार इग्नोर कर देते हैं, कई बार हाइपर वोमिटिंग जैसे बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, तो कई बार मरीज बेहोश भी हो जाता है, तो वोमिटिंग को भी एक वार्निंग साइन मानना चाहिए
0: जी।
1: उसके अलावा पेट में दर्द या ब्लीडिंग हो तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने ग्रोथ कम हो तो बच्चा नहीं घूमे तो अपने को दिखाना चाहिए, कई बार पानी गिरने लग जाए तो दिखाना चाहिए, दर्द आए तो दिखाना चाहिए, BP बढ़ जाता है तो उसके अंदर सूजन आ जाती है, हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है तो अपने चेकअप कराना चाहिए, भूख नहीं लगे, कई लोगों में जॉन्डिस हो जाता है, इचिंग होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉन्डिस होता है, तो अपने खुजली आए, हाथों पैरों में दर्द हो और ऐसा पीला पीला लगे तो अपने को दिखाना चाहिए
0: जी।
1: इसके अलावा अपने जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपने रूटीन चेकअप जरूरी होते हैं
0: जी। तो जैसे बीपी का कोई पेशेंट है या डायबिटीज का है, किसी को थायराइड है, तो ऐसी जो महिलाएं हैं उन्हें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है?
1: जैसे बीपी के पेशेंट्स हैं उनको रूटीन बीपी चेकअप करना चाहिए। बीपी यदि बढ़ जाता है तो उसमें ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चा अंदर ही खत्म हो जाता है, लाइकर कम हो जाता है, तो उनकी रूटीन चेकअप जैसे अपने 1 मंथ की जगह अपने को 15 डेज 7 डेज से रूटीन होता है, कलर डॉपलर होता है, उसमें ग्रोथ कम होती है, ग्रोथ कम होती है तो अपन जल्दी डिलीवरी करवाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट में तो उनका इंसुलिन का चार्ट बना के देते हैं, प्रॉपर चेकअप होता है, शुगर यदि कम ज्यादा जो भी होते हैं उसको मेंटेन

0: करते हैं, 10-10 डे से उनकी विजिट होती है ताकि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो। शुगर ज़्यादा होती है तो ग्रोथ बढ़ जाती है और उसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो शुगर मरीजों का चेकअप और डायबिटीज़ के पेशेंट का चेकअप जल्दी करना चाहिए।
1: तो बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी डॉक्टर साहब कि जो भी हमारे डायबिटीज़ के बीपी के पेशेंट है वो विशेष ख्याल रखे गर्भावस्था में। डॉक्टर साहब कई बार जब होता है कि गर्भ में बच्चा जो है पल रहा है लेकिन उसकी हलचल महसूस नहीं होती, तो ऐसा कब ध्यान में आए कि हलचल अगर नहीं हो रही है तो माता को क्या करना चाहिए उस वक्त?
0: रूटीन में 5 मंथ के बाद में अपने को बच्चे की हलचल महसूस होती है, 6 मंथ में अपने को फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, 10 से 12 मूवमेंट यूजुअली फील होती है
1: जी।
0: यदि आपको फील नहीं हो रही तो कुछ मीठा खा के देख सकते हैं, मीठा खाने के बाद भी धड़कन महसूस नहीं हो रही कि कुछ घूम नहीं रहा, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत सोनोग्राफी करें
1: जी।
0: कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं रह रही। कुछ दिक्कत में बच्चा गंदा पानी छोड़ सकता है, बच्चा जैसे कोड के अंदर फंस जाता है तो मूवमेंट नहीं हो पाती, पानी कम होता है तो सोनोग्राफी से पता चल जाता है, तो पूर्ण ट्रीटमेंट लें
1: जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर साहब कि गर्भावस्था में जो भी टीके लगते हैं उनके बारे में आप हमें बताएं कि कौन कौन से ऐसे टीके हैं और वो क्यों जरूरी है।
0: एक तो टिटनेस का जो अपन रूटीन पहले से लगा ही रहे हैं अपने, 3 महीने के बाद में लगता है। एक अपने डिप्थीरिया का भी स्टार्ट कर दिया अभी, और एक फ्लू वैक्सीन होता है
1: जी।
0: तो फ्लू वैक्सीन से कई बार निमोनिया बच्चों को जो हो जाता है उसके लिए प्रिवेंशन के लिए मदर को लगता है, जो अभी स्टार्ट किया है अभी
1: जी। डॉक्टर साहब आज के समय में अगर देखा जाए तो सिजेरियन डिलीवरी जो है वो ज्यादा होने लगी है, तो सामान्य प्रसव की संभावनाएं बढ़े इसके लिए क्या कोई गर्भवती महिला प्रयास करे तो संभव है?
0: हाँ, उसमें अपन 6 मंथ के बाद में योगा एक्सरसाइज और वर्क के लिए अपन बोलते हैं। रूटीन में क्या अपने लेजी लाइफ हो गई है, अपने काम कर रहे हैं, काम करने के बाद घर जाके कम्प्लीट रेस्ट करते हैं
1: जी,
0: तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है जिससे मसल की स्ट्रेंथनिंग आएगी। जब मसल स्ट्रेंथ होगी तो बेबी अच्छी तरह से पुश हो जाता है, तो और एक उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पैम्परिंग हो जाते हैं बच्चे,
1: कुछ आज की जो लड़कियां हैं वो शायद घबरा भी जाती है सामान्य
0: वो पैम्परिंग हो जाता है कि हमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यदि अंदर डॉक्टर सुपरविजन के हो तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से होती है। मसल पावर अच्छी होनी चाहिए तो इसके लिए योगा और एक्सरसाइज वॉक ये करना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसी बीच आपकी पसंद का एक गीत और आप हमें बताएं।
0: हाँ, मैं कभी नीले नीले अंबर पे,
1: हाँ जी
0: ये गाना मुझे अच्छा लगता है
1: जी। डॉक्टर साहब ये गीत आपके साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए।

0: इस गीत के बाद फिर बढ़ते हैं हम इसी कार्यक्रम की आगे की चर्चा की ओर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में सावधानियों के बारे में, आज के समय में डॉक्टर साहब देखा जाए तो काफी लेट लेट जो है वो शादियां होती है, तो माँ बनने की उम्र भी जो है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ती उम्र में जब गर्भाधान होता है तो ऐसी उम्र वाली महिलाएं क्या अतिरिक्त सावधानियां बरते?
1: लेट मैरिज तो हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जल्दी 30 से पहले अपने दो बच्चे हो जाएं तो बढ़िया रहता है
0: जी।
1: लेट मैरिज के अंदर जैसे अपने आफ्टर 35 डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, एबनॉर्मल बच्चे होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो एग की क्वालिटी हो जाती है वो खराब हो जाती है
0: जी।
1: कई लोगों के तो हमने अभी देखा है जैसे 32 की एज के अंदर पीरियड ही चले जाते हैं, प्री मैच्योर मीनोपॉज हो जाता है। तो मीनोपॉज जल्दी हो जाता है तो उनके आफ्टर मैरिज अपने को डोनर

0: IVF पे जाना पड़ सकता है. बाद में जो जितनी भी डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरॉयडिज्म और ये जो हाइपरटेंशन, ये आफ्टर 35 बढ़ जाते हैं
1: जी.
0: तो ये सब प्रेगनेंसी के साथ हाई रिस्क चीज़ें होंगी, तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी
1: जी.
0: तो हो सकता है जितना 25 से लेके 30 के बीच में दो बच्चे हो जाएं तो अपन अच्छा मानते हैं. तो इन लोगों को यदि अपने कंसीव हो तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होनी चाहिए. प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में अपन उसका पहले ये चेकअप करवाते हैं, थायरॉयड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये चेकअप करवाते हैं. प्रेगनेंसी पहले फोलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, फिर उसके कंसीव होने के बाद कुछ एडवांस टेस्ट कराते हैं कि बच्चे में कोई दिक्कत नहीं हो
1: जी.
0: जो डाउन सिंड्रोम के टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर, फिर NIPT टेस्ट होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि एबनॉर्मल बच्चे नहीं हो. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ओवा की क्वालिटी खराब होने के चांस रहते हैं, एबनॉर्मल बच्चे होने के चांस बढ़ जाते हैं
1: जी. तो सही उम्र में ही अगर
0: 25 के बाद अच्छा है
1: जी. जी डॉक्टर साहब, एक और ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे गर्भावस्था का जो समय होता है गर्भवती महिला के लिए थोड़ा सा एक इमोशनल भी हम कह सकते हैं और थोड़ा शारीरिक बदलाव भी उसमें आते हैं, तो परिवार और उसमें एक पति की भूमिका क्या रहनी चाहिए?
0: उसको मेंटल सपोर्ट करना चाहिए. कई लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा ग्रो नहीं हो रहा, इनिशियली मूड स्विंग्स होते हैं, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कुछ क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को नमकीन की क्रेविंग होती है. तो जैसा उसको अच्छा लगे उसके हिसाब से परिवार को मॉडिफिकेशन चाहिए. कई लोग रोटी नहीं खा पाते तो उसके लिए राइस बना के दे दें. तो उसको मेंटल सपोर्ट करना चाहिए, जैसा उसको अच्छा लगे उसके हिसाब से वो खाना खा सकती हैं. कई लोग राइस खाते हैं, कई लोग मीठा खाते हैं, कई लोग नमकीन खाते हैं, तो ये अलग अलग तरह की क्रेविंग होती है. तो उसको मेंटली उसको सपोर्ट करना चाहिए. चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है तो उसको मेंटली सपोर्ट करो. शाम को मन नहीं लगे तो बाहर घूमने चले जाएं
1: जी, जी.
0: तो परिवार की इसके अंदर भूमिका होती है
1: जी.
0: प्रॉपर उसको डाइट का ध्यान रखें और मेंटल सपोर्ट करें
1: जी. डॉक्टर साहब, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि परिवार और घर वालों की जो है वो अहम जिम्मेदारी हो जाती है एक गर्भवती महिला के प्रति. डॉक्टर साहब, जब प्रसव की संभावित तारीख जो है वो नजदीक आ जाए तो क्या विशेष तैयारियों की आवश्यकता होती है?
0: प्रसव में 9th मंथ के अंदर हम लोग इसमें स्टार्ट कर देते हैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. एक तो मूवमेंट का ध्यान रखना होता है कि मूवमेंट कम हो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है. कई बार पानी स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट पेन नहीं होता तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, दर्द हो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे. और एक मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमारी डिलीवरी होने वाली है. तो कई बार पोस्टमार्टम ब्लू हो जाता है, जैसे उसके लिए प्रिपेयर रहें कि बच्चा नॉर्मल है, ये सब चीजें होने वाली है, थोड़ा लाइफ हेक्टिक होगी, तो उसके लिए अपने को मेंटली पहले से प्रिपेयर करना चाहिए
1: जी.
0: और लेबर में पेन होंगे उसके लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी करा सके.
1: कई बार डॉक्टर साहब जैसे आपने तारीख दे दी कि इस तारीख को बच्चा होना संभावित है, लेकिन उससे भी अगर ऊपर दिन निकल जाए तो क्या किया जाए?
0: उसमें फिर दर्द लगा के डिलीवरी कराते हैं
1: जी.
0: नहीं तो बच्चे में पानी की कमी हो जाती है और क्रेनियम जो अपन बोलते हैं वो सब में क्लोज होना शुरू हो जाते हैं
1: जी.
0: तो हेड साइज बढ़ जाता है, तो फिर अपन डिलीवरी नहीं कराते तो उसके बाद अपने को सिजेरियन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं
1: जी. ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये तो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी. निश्चित रूप से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इनका लाभ उठाएगी. और अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाएं उनके परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन और घबराना नहीं चाहिए. अपने डॉक्टर से, बड़े लोगों से गाइड ले सकते हैं. जितनी भी क्वेरीज होती है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका एंजॉय करें, हर चीज़ का एंजॉय करें. उसके ग्रोथ के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें. म्यूजिक का अच्छा है, बुक्स पढ़ने का मन है तो बुक्स पढ़ें. बच्चा अंदर ही ग्रोथ के टाइम उसकी 7 मंथ में सुनने लग जाता है, तो बाहर जो सुनते हैं उसका एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है
1: जी.
0: तो अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें तो उसे पॉजिटिव रहता है. तो स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और खाने पीने का ध्यान रखें
1: जी. डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाएं किस तरह से गर्भावस्था में अपना ख्याल रखें, किस किस तरह से सावधानियां बरतें, इस बारे में आपने जानकारी दी. डॉक्टर संतोष सुथार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे संभव हॉस्पिटल बीकानेर.
3: क्या आप स्त्री रोग या मैटरनिटी से जुड़ी समस्याओं का एक सुरक्षित और आधुनिक हल ढूंढ रहे हैं?
4: तो आप चिंता छोड़ दीजिए, बीकानेर का विश्वसनीय संभव हॉस्पिटल लेकर आया है आपके लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा. हमारा एडवांस लेप्रोस्कोपिक सेंटर अब दूरबीन द्वारा बिना बड़े चीरफाड़ के सफल ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करता है.
3: हमारे यहाँ है सोनोग्राफी, NICU, ICU की संपूर्ण सुविधा, साथ ही दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, IUI की सुविधा और निसंतानता का सफल इलाज. बच्चादानी और अंडादानी के ऑपरेशन अब बेहद आसान और सुरक्षित हैं.
4: डॉक्टर संतोष सुथार, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के वर्षों के अनुभव और विश्वास के साथ आपका परिवार है बिल्कुल सुरक्षित हाथों में.
3: तो ध्यान रखिए, जब बात हो परिवार की सेहत की तो हर फैसला महत्वपूर्ण होता है.
4: आज ही संपर्क करें एक्सरे गली, सेल टैक्स ऑफिस के पास, तुलसी सर्किल, बीकानेर.
3: कॉल

0: या 0151-297-0443 पर। आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे तैयार रहती हैं।
1: संभव हॉस्पिटल, जहां बेहतरीन इलाज
0: और स्वास्थ्य दोनों संभव हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्दी बिकाना। डॉक्टर संतोष सुंथार से बातचीत कर रही थी श्रीमती कविता वर्मा। ये कार्यक्रम संभव हॉस्पिटल बीकानेर द्वारा प्रायोजित था।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी। 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस महानिदेशक ने कल जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने भी चलाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की।
2: अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए

0: बचने की बहुत आवश्यकता।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इसमें देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने देश भर में 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल चलाकर इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग रहने का संदेश दिया है। उन्होंने नागरिकों से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने का आग्रह किया। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी

0: बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। कल नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। ममूटी और कार्तिक आर्यन को ब्रह्मयुग्म और चंदू चैंपियन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना की सूचीबद्ध लिस्ट से हटाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी 44 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक और संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक अधिक मूल पर दवा बिलिंग करने वाले 11 अनुमोदित फार्मेसी स्टोर्स का TMS अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने इम्पैनल्ड फार्मेसीज के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परीक्षा परिणाम पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस साल से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस साल की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। NTA के अनुसार हाल ही के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट नकली पाई गई है, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 12 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। परीक्षा में नकल और फर्जी परीक्षा विद्यार्थियों की रोकथाम के लिए सतर्कता दल भी गठित किए गए थे। करौली आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे लेकर जिलेवासियों में उत्साह और उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले भर में विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विकास गोष्ठी में जिले की उपलब्धियों, चुनौतियों, पर्यटन, कृषि, उद्योग, रोजगार और रेल संपर्क जैसी भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। देर सांय रणगवा तालाब आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा, जहां विद्युत गान और सहनाई वादन ने सांस्कृतिक माहौल को यादगार बना दिया। वहीं स्वच्छ करौली, सुंदर करौली अभियान के तहत शहर में विशेष सफाई, सजावट और रोशनी की गई। आज साइकिल रैली, भरत वृक्षारोपण, पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अनेक आयोजन होंगे। भाग्यवाली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा वनडे में चोटिल हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर

0: मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी। 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित
1: होगा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियो 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।
2: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही हैं जया सिन्हा।
3: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुवेद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाई आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
3: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
4: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सिलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
3: माधवन की खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
4: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबी नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ले लीजिए जहाँ पे अजीत दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता है कि अजीत दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
3: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
4: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
3: और आपने एक्सेप्ट किया।

0: ये भी
1: मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होके मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस, बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देन है।
0: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
1: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे। इट इज अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
0: आप FGI से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे लेगा?
1: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था, जो वो देश की खासियत थी वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए, वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है, एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
0: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम इफेक्ट, कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग रही थी। साथ में आपने फिल्म बनाई लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
1: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए दिखाए बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे, जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस सब छोटे लगने लगते हैं, बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
0: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह सकते हैं युवाओं पर इसका इफेक्ट?
1: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से

0: देखते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउ नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरी दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो जो समुन्द्र को अपने काबू में कर ले वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नंबी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पे जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है, विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर सारा खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर, ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
1: क्राफ्ट
0: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है, कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। अब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक

0: लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला, कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
1: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपको जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम, और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
0: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
0: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो यार मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
1: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरंधर, एक और फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारे इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
0: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ, या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
1: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल। It was that very good. इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर was exactly that. और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ, उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में, बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दिस पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
0: रियल लाइफ हीरोज की आप बात करें, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
1: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है, और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
0: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
1: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो एक किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पागल पर मुझ में अभी भी।
0: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय

0: के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण डीडी न्यूज के सहयोग से किया गया।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि

मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम मुकुल। आज का मुकुल कार्यक्रम लेकर आई हैं डॉक्टर स्वर्ण रेखा।

क्यों? जय हिंद। जी हाँ, जीवन में जब हम चलना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं। अब आप भी सोच रहे हैं कि कैसे लाइफ को कभी भी मोल्ड करना हो या लाइफ के लिए कभी भी कोई चीज सोचनी हो तो लाइफ स्मूथ कैसे होगी। यही तो सबसे बड़ी चीज है। और इसमें हम सबसे ज्यादा अगर कहें कि खुद को रखना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, तो वी कांट हेल्प इट आउट। जी हाँ, यही तो बात है ना कि जब संडे होता है और हमें सुबह सुबह उठा दिया जाता है, तो स्कूल की बात होती है, परिवार की चर्चा होती है, और साथ में होता है कि हमें खुद को लेकर कैसे चलना है। हम ले ही तो नहीं पाते ना खुद को, तो चलिए थोड़ा सा नॉरिशिंग करते हैं खुद को, पहले चिल आउट करते हैं और बात करेंगे साथ साथ में हमारी अपनी हमारी चर्चा की। लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल जो आपको नॉरिश करे।

सो वेरी गुड मॉर्निंग हमारे लिए हमारा दिन बहुत प्यारा होता है. जी हाँ, ये गुड मॉर्निंग है हमारे अपनों के साथ. बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम स्कूल की पढ़ाई, परिवार और स्वयं के बारे में सोचते हैं ना, तो सोचते हैं कि इस ट्रायंगल के बीच में हम कैसे खुद को बैठाएंगे. यही तो बात होती है ना कि हम खुद को मैनेज करना भूल जाते हैं. छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मा हमें आज उठाए नहीं और स्कूल जाना ना पड़े. और परिवार ये सोचता है कि हाँ, बच्चों के लिए स्कूल ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है और कॉम्पिटिशन. लेकिन उसके बीच में बच्चे ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है. तो तीन चीज़ें आती हैं. समय का सही प्रबंधन, जी हाँ, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है. और खुद के लिए एक लिस्टिंग करना शुरू करें, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है. अगर मैं मेरी प्रायोरिटीज़ के साथ में कोई चीज़ को बनाऊंगी, करूंगी और उसको सॉर्ट आउट करूंगी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ. लेकिन साथ ही दो चीज़ें और भी कर सकती हूँ. अब वो सोच रहे हो क्या? दो चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ पे हमने एक तो सोचा था कि मेरा प्लस पॉइंट क्या हो, मैं कैसे खुद को मैनेज करूँ. सेकेंड थिंग, मैं कामों में कैसे मदद करूँ. और थर्डली, कि मैं परिवार के साथ में कैसे जुड़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स भी खुद को करना है.

स्मार्ट स्टडी भी करनी है, छोटे ब्रेक भी लेने हैं, और हाँ सेल्फ केयर भी करनी है। और ये सेल्फ केयर कैसे, जब हम पापा मम्मा के साथ में टाइम निकालते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो ये होता है सेल्फ केयर या मी टाइम। और हाँ सबसे बड़ी चीज़ है, छोटे बच्चों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी राइम्स होती हैं, पोइट्रीज होती हैं, कलर्स होते हैं, ऐसे ही बड़े बच्चों के लिए उनकी पसंद का संगीत जो अच्छे फ्लो टेक्सचर या गिटार्स के साथ में हो, खेल होते हैं। और साथ ही एक और चीज़ होती है, वो है अपनों के साथ में निकाला हुआ वक्त जिसमें वो नींद लेते हैं। मैं तो पहले जब मेरा चाइल्डहुड था, मैं बचपन में अपने पापा के कंधे पे सर रख के सो जाया करती थी, इससे इतनी मानसिक शांति मिलती थी एंड जो मेडिटेशन होता था दैट वाज फैबुलस। तो क्यों ना एक मेडिटेशन हमारा और हो जाए, जी हाँ वो है म्यूज़िक के साथ। तो पापा के लिए म्यूज़िक है, हमारे लिए म्यूज़िक है, होगा क्यों नहीं कुछ इस तरीके से।

0: छोटे राइम्स होती हैं, पोइट्रीज होती हैं, कलर्स होते हैं, ऐसे ही बड़े बच्चों के लिए उनकी पसंद का संगीत जो अच्छे फ्लो, टेक्सचर या गिटार्स के साथ में हो, खेल होते हैं। और साथ ही एक और चीज़ होती है, वो है अपनों के साथ में निकाला हुआ वक्त जिसमें वो नींद लेते हैं। मैं तो पहले जब मेरा चाइल्डहुड था, मैं बचपन में अपने पापा के कंधे पे सर रख के सो जाया करती थी। इससे इतनी मानसिक शांति मिलती थी एंड जो मेडिटेशन होता था दैट वाज फैबुलस। तो क्यों ना एक मेडिटेशन हमारा और हो जाए, जी हाँ, वो है म्यूज़िक के साथ। तो पापा के लिए म्यूज़िक है, हमारे लिए म्यूज़िक है, होगा क्यों नहीं कुछ इस तरीके से।
1: दूसरे पापा जैसे क्यों नहीं हो?
2: मैं दूसरे पापा से अच्छा पापा हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। बाकी पापा संडे को आराम करते हैं, मैं संडे को भी काम करता हूँ, इसीलिए मैं अच्छा पापा हूँ। ऐसा ऋतु दीदी कहती है।

बहुत बार हमारे सामने वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं, और वो हिस्सा भी कैसे होती हैं आपने सोचा ही होगा, क्योंकि हम कई बार सोचते सोचते ये सोचने लग जाते हैं कुछ नई बातें कैसे होंगी, कुछ नई चर्चा क्या होगी, कुछ नया कौन हमें आज बताएगा। तो आज कुछ नया आपकी दीदी आपको बताएगी। वो ये है कि मदर टेरेसा के बारे में तो आपने सुना ही है। आपको पता है कि भारत की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? जी हाँ, मदर टेरेसा को मदर टेरेसा सारे कहते हैं, लेकिन भारत की मदर टेरेसा भगत पूरन सिंह को कहा जाता है। और ये भी क्यों? क्योंकि पंजाब में इन्होंने सबसे ज़्यादा समाज सेवा का पर्यावरणविद के रूप में और लेखक के रूप में कार्य किया। और इनकी जो निस्वार्थ भावना थी ना कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो वास्तव में मानसिक रूप से सही नहीं है। तो बच्चों, कई जानकारियाँ ऐसी होती हैं ना लाइफ की जो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। सो भगत पूरन सिंह जी की जो स्टोरी है ना, ये इतनी मोटिवेशनल है कि जब 1947 में भारत में विभाजन का काम चल रहा था, उस समय पे अमृतसर के पिंगवाड़ा में इन्होंने लावारिस बच्चों के लिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए और विकलांग लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया, एक सैनिटोरियम बनाया, जहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा जोड़ा जाता था। भगत पूरन सिंह का जन्म 4 जून 1904 में हुआ था। लेकिन जीवन सबका अच्छा नहीं होता ना, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के कुछ, और जैसे आप भी बोल देते हो कि पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। लेकिन हाँ, इनका लाइफ जो पोर्शन था वो बहुत स्ट्रगल।

इन्होंने लाहौर में डेरा साहिब में सेवा करी और वहां से इन्होंने 1934 में यानी 1934 में गुरुद्वारे के बाहर एक लावारिस बच्चे को देखा जो पोलियोग्रस्त था, जो खुद से खड़ा नहीं हो सकता था, और उसको बड़े प्यार से उन्होंने प्यारा सिंह नाम दिया और उसकी देखभाल करने लगे। और इसी एक छोटी सी पहल के साथ ही उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस तक किसी भी सरकारी मदद के बिना, किसी भी दूसरे और उसको चैरिटी के बिना, उन्होंने ऑल इंडिया पिंगवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी का एक जिसको कहते हैं स्थापना करके उसको वहाँ पे एसोसिएट किया। इनको 1979 में पद्मश्री दिया गया लेकिन इन्होंने 1984 में उसको लौटा दिया था। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ आपको अपनी लाइफ को अलग लेकर जाना होता है तो वो आप पर्यावरण से जुड़ जाते हैं, पेड़ पौधों के संरक्षण से जुड़ते हैं। और इन्होंने जन जन में इसकी जो जागरूकता फैलाई, आज भी पिंगवाड़ा में इन ज़रूरतमंद लोगों की सेवा होती है और उनके जाने के बाद भी उन्हें मदर टेरेसा का नाम दिया जाता है। तो बच्चों आपने एक चीज़ सोची होगी कि मदर टेरेसा सिर्फ एक माँ का रूप नहीं है, मदर टेरेसा सिर्फ हमारी उस माँ का रूप भी है जो माँ हमारे साथ में है। और वो माँ कौन सी है जो हमारे साथ है, क्योंकि माँ के बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। पिता के रूप में भी माँ होती है और माँ स्वरूप में भी माँ होती है।

लेकर चलती है। हमारे जीवन में साथ चलने का नाम सिर्फ अपनों का नहीं है, उनका भी है जो परिंदे हमारे घर के छोटे से घोंसले में भी रहते हैं। तो आज कविता है आपके लिए कि अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। सही कहा है कि चिड़िया को भी एक घर चाहिए, कभी आंधी आती है तो वो चिड़िया कहाँ रहेगी। डालें टूटी हैं झंकोर के, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किसने दुख की बात कहेगी। और हाँ, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चीची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। सही कहा, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। हाँ, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। सही है ना कि ये चिड़िया कहाँ रहेगी, और हम इस चिड़िया को अपने साथ कहाँ रख पाएंगे। नहीं रखते ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम घर में छोटे छोटे घोंसले, जो आजकल बने हुए घोंसले आते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने नेट्स बना के घोंसले लगा रखे हैं। हमें गौरैया को बचाना है और प्रकृति के साथ जोड़ना है। और साथ ही, क्योंकि कविताएं महादेवी वर्मा जी की हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, और उसी में एक और कविता उन्होंने लिखी इस चिड़िया के लिए ही कि भैया हमारी चिड़िया रानी, क्योंकि उन्होंने अपने घर के बाहर जो कोर्टयार्ड था जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे चिड़िया को घोंसला बनाते देखा था। तो उन्होंने उसके लिए ये कविता लिखी कि भैया हमारी चिड़िया रानी तिनका लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पे लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दोनों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी, फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी कर लेंगे उसकी निगरानी, फिर जब उसके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। लेकिन अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, जी हाँ, ये ज़रूर सोचिएगा और जुड़िएगा, क्योंकि घर में भी दो चिड़िया और है। भाई बहन का जो प्यार होता है किसी चिड़िया से कम नहीं होता, और चिड़िया आपस में एक दूसरे से कैसे ताना बाना जोड़ती है, जैसे भाई बहन का प्यार।

जी हाँ, जीवन के संघर्ष को जब भी देखना हो तो कुछ नए अंदाज में भी देखना चाहिए। हम बच्चे यही तो नहीं कर पाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हमारी सफलता किस बात पे जाएगी, हमारी सफलता का रूप क्या रहेगा। देखो, सफलता किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज सक्सेस एक्चुअली। सक्सेस का मतलब होता है कि जब आप किसी ऐसे काम को करने के लिए जाएं जहां पे आपको कोई हेल्प आउट कर रहा हो। तो चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ, ऐसे तो आप समझोगे नहीं ना बात, दीदी की बातें अलग अलग होती हैं और बड़े प्यार से समझाने वाली होती हैं। तो आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, कि सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में क्या सोचना चाहिए, तो वो ये है कि एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी की मदद से ना एक पत्थर को तराश रहा था। ये स्टोरी है पत्थर पर पड़ी चोट और उसकी सफलता की। और जब उस भगवान की मूर्ति को तराशने के लिए मूर्तिकार ने पत्थर को तोड़ना चाहा, पहली चोट मारी तो पत्थर जोर से धड़ाम से नीचे गिर गया। अब मूर्तिकार ने सोचा भाई कि अब दूसरा पत्थर उठाया जाए, ये पत्थर तो गिर गया। दूसरा पत्थर उठाया गया, जैसे ही उसने उस पर छेनी रखी, पत्थर चिल्लाने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मूर्तिकार ने सोचा अरे भाई, ये पत्थर तो चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो चलो तुम्हें भी साइड में रख देता हूँ। अब मूर्तिकार बैठा सोच रहा है कि भाई अब पत्थर कौन सा लेकर आऊं कि मूर्ति तराशूं, क्योंकि मंदिर में मुझे मूर्ति देनी है। उसने पत्थर को साइड में रख के तीसरे पत्थर की तरफ कदम बढ़ाया, तीसरा पत्थर लिया और धीरे धीरे उस पर छेनी हथौड़ा मारना शुरू किया। पत्थर ने दर्द सा, उह आ उई अम्मा, सब कुछ धीरे धीरे हथौड़ी की मार पड़ रही थी। कुछ दिनों में जो मेहनत के बाद में बड़ा खूबसूरत सी मूर्ति बनकर सामने आई। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसे मंदिर में स्थापित किया गया। कुछ दिनों बाद जब लोग मंदिर में पूजा करने आए तो नारियल फोड़ने के लिए उसी दूसरे पत्थर जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था ना, जो बोल रहा था अरे मुझे दर्द हो रहा है छोड़ दो, उसी उसके ऊपर ही सबने नारियल फोड़ना शुरू किया। अब हर दिन लोग मंदिर आते और पहले वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते। तो इससे आपको क्या चीज समझ में आई, कि जो पत्थर हथौड़ी की मार सहने से डर गया था वो जीवन भर कष्ट झेलता है। दैट मीन्स इफ यू गिव अप ऑन समथिंग, आपने किसी चीज को मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है, तो यू पुट बी योर सेल्फ इन द सफरिंग्स, आपको कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेहनत करने के लिए, किसी अच्छे काम को करने के लिए कहा जाता है, तो आपको उसको करने के लिए, मना करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, आपको उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। और इसी तरह जीवन की हर चुनौती को आपको लेना आना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करेंगे ना बच्चों, तभी तो हम जीवन में सक्सेसफुल होंगे, और होंगे तो साथ में हमारी हर छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी होगी। कैसे होगी पूरी, क्योंकि पूरी करने के लिए किसी एक चीज की जरूरत नहीं होती, पूरी करने के लिए सभी चीजों की जरूरत होती है।

जी हाँ, मन में बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और बातें जब बड़ी रोचक हो जाती है ना, तुम्हारे मन को छू जाती हैं कहीं ना कहीं, और हम चाहते हैं कि हमारी वो बातें कभी खत्म ही ना हो। अब वो खत्म कैसे होंगी, क्योंकि बातें जुड़ी हैं ना हमारे विज्ञान से, अंतरिक्ष से, हमारे शरीर से। और जब कहते हैं ना कि रोचक बातों का सिलसिला जब जारी होता है ना, तो बच्चों बहुत मजा आता है सीखने में, और वो जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं यही तो बात है, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। अब वो हड्डियां कैसे काम करती हैं? हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में 206 रह जाती हैं। और तो और, अगर हमारे दिल की बात की जाए, हमारा दिल 1,00,000 तकरीबन तेजी से धड़कता है। जी हाँ, बहुत तेज धड़कता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो अपनी रफ्तार कम कर लेता है। तो जब आप बोलते हो ना, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी बात नहीं सुनी, तो आपके दिल में कोई इमोशंस नहीं होते। ये एक छोटा सा कहने का, जिसको आप बोल सकते हो, माध्यम होता है। और साथ ही अगर बात की जाए छींक की, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी अच्छी करते ही है, ये 160 किलोमीटर पर आवर की गति से आती है। और हाँ, अगर बात करी जाए अंतरिक्ष की, तो हम लोग अगर सी प्लैंकटॉन्स की बात करें, सी वीड्स की बात करें, तो ये 50% ऑक्सीजन देने में मदद करते हैं। और साथ ही सूर्य की रोशनी तो आपको पता ही है कि 8 मिनट और 20 सेकंड में हमारी धरती तक पहुंच जाती है। लेकिन आपको पता है कि शार्क जो है वो पेड़ों से पहले, बहुत पहले, जब पेड़ आए थे उससे भी पहले से मौजूद है। यानी कि जो सी एनिमल्स हैं वो बहुत पहले से हमारी धरती पर विचरण कर रहे हैं। ये थी हमारे जीवन से जुड़ी, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट से जुड़ी रोचक बातें। लेकिन रोचक बातें दोस्तों के साथ कुछ खास भी तो हो जाती हैं, शायद कुछ ऐसे।

0: जो बहुत बेकरार है।
1: जी हाँ, हमारा समय भी हो चला है, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन हाँ, ये जाते हुए लम्हे हमें हमारे दोस्तों के साथ तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन हाँ, दीदी की कही दो तीन बातें ज़रूर याद रखिएगा कि टाइम को मैनेज करना सीखिए, बिजली पानी की घर में बचत ज़रूर मम्मी के साथ में करवाएं। और हाँ, आपकी दीदी आपसे फिर से मिलेगी आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में, क्योंकि जाने का समय हो गया। बच्चों, जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मुकुल। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर स्वर्ण रेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए मोहित चौहान के स्वर में। फिल्म का नाम है नोटबुक।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: को मैंने इसे मोबाइल चार्ज करना
3: दिमाग चार्ज कर अपना
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
3: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
4: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
3: बुद्धू सुधर जा
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: एनी फ्रॉड को करो बाय बाय
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
8: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
9: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग
8: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
9: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से
8: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
9: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
8: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक
9: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान का और विस्तार का
8: जुड़िए आकाशवाणी

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में जब सुनिए अरिजीत सिंह का गाया हुआ एक गीत। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

मानव संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए लिया है हमने फिल्म टुम बुम टू से। गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

अंकुर अरोड़ा मर्डर केस। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में। अरिजीत सिंह को ही सुनिए, फिल्म है सनम रे।

आपने सुना अरिजीत सिंह का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था तू झूठी मैं मक्कार। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कबीर सिंह से, गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

अभी आपने सुना ऑल इज वेल फिल्म का गीत अरिजीत सिंह के स्वर में कार्यक्रम का

मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलावरू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। अब आप सुनेंगे

आपने निकाह फिल्म का गीत सुना, स्वर था सलमा आगा का, गीत के बोल हसन कमाल ने लिखे थे, संगीत रवि का था। इस गीत को सुनना चाहते थे सुराणा मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अग्रणी, लालिंदर होलेंदर आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद धम्मानी। कार्यक्रम का अगला गीत रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से है, स्वर है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों का। गीत के बोल संतोष आनंद ने लिखे हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं चूनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, मेहनाज नदीम, नदीम सादाब और जाकिर हुसैन बाप।

प्रोग्राम का अगला गीत महेंद्र कपूर, मनोहर उदास, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है। फिल्म का नाम है पूर्व और पश्चिम। गीत के बोल इंदुवर ने लिखे हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पवार, लालचन पवार, अरुणा रानी पवार। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखे हैं पवनपुरी बीकानेर से भवरलाल सोनगरा, गीता रानी, सीता रानी, मूलचंद सोनगरा, प्रथम राज, हंस राज, मनोहरलाल सोनगरा, मुकेश आकाश सोनगरा और मिस्त्री सीताराम पवार ने।

आपने मिस्टर इंडिया फिल्म से गीत सुना। स्वर थे शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत को सुनना चाहते थे आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। लीजिए सुनिए हरी हरन की आवाज में परदेश फिल्म का गीत। युगल स्वर है कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य शंकर महादेवन के। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीत नदीम सुरन का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटगेट बीकानेर से ओंकार चंद सरपटा, संपत ताराचंद सरपटा, विशाल और सनी सरपटा। इसी गीत को सुनने के लिए आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें पत्र भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिब, साबिर राही और मेहराज जहां ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर यह गीत।

नुमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में राधा का संगम फिल्म का गीत। युगेश्वर है सब्बीर कुमार का, गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं, संगीत अनु मल्लिक का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं पाबूबारी बीकानेर से लालचंद जैदिया, सुधा जैदिया, कविता जैदिया और जितेंद्र जैदिया। इसी गीत को सुनने के लिए जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से ने पत्र लिखा है डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही और गौरव शाही ने। तो लीजिए आप सब सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे संगम फिल्म का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश का। गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर से मुकेश श्योता, हरीश श्योता, पिंकी श्योता, राकेश श्योता। इसी गीत की फरमाइश भेजी है लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, मोहम्मद रज्जाक पंजाबगीर, अब्दुल सत्तार, बेबी मुमताज, निसार अली, खातून बेगम और जैतून बेगम ने। इसी गीत को सुनने के लिए ग्राम अमलेश्वर से हमें पत्र मिला है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। तो लीजिए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनिए ये गीत।

लीजिए अब सुनिए नया दौर फिल्म का गीत, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले का। इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, मोहम्मद आजम खींची, अकमल हुसैन बियानी, अमजद अली खींची ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री, तरुण खत्री, वर्षा खत्री, जोय खत्री। तो लीजिए आप सब अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

0: दौर फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए, सहिर लुधियानवी के लिखे, ओपी नैयर के संगीतबद्ध की इस गीत के साथ ही फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं, आप श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट, सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है।

0: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के सात जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य तीन जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: रेडियो 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। इसमें आज आप बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस विशेष महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही जोड़ों में दर्द और उपाय और गर्भावस्था के बाद वजन कम करे विषय पर भी बातचीत होगी।

शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज आप इच्छा शक्ति और सफलता विषय पर आज की बात सुनेंगे। साथ ही बारिश का मौसम और स्वास्थ्य, WHO और NCERT पर लघु जानकारी दी जाएगी। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार से फिल्म संगीत।

ग्रामीण जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। इसमें आज आप अन्नपूर्णा रसोई योजना और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान विषय पर चर्चा सुनेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक पेड़ मां के नाम अभियान विषय पर भी बातचीत की जाएगी। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8:30 पर श्रोता सुनेंगे लोक संगीत। संसद के समक्ष मुद्दे यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे श्रोता सुनेंगे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसमें आज कलाकार होंगी विदुषी श्रीमती बालमणि ईश्वर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। रात्रि 8:00 और 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूचना। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:10 होने वाले हैं। श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार साथियों, हाजिर रहा खड़ी अवां जो सिंधी प्रोग्राम एमा हेमा मलानी तवां जे दिली आजिया थी कया। साथियों, अज आहे महीने जो टियों आर्तवार, अज जो प्रोग्राम आहे बारन जे लाए गुलरन जी गुलकारी। अज जे प्रोग्राम में असा बारन की बुधाई नासी बाल कहानी ए फोन जे जरिए गाल बोल कंदासी नंडड़े नंडड़े बारन सा, चर्चा कंदासी बैंक राष्ट्रीयकरण ॾियारे ते, मजो मानिंदासी सुहणे सुहणे बाल गीतन जो। त साथियों, सभिनी खां पहिरीं असां मज़ो माणूं था हिन सुहणे बाल गीत जो।
1: आयो आयो आयो यारो मुल्क सॼे में नाले वारो

हाय तव्हां ॿुधी रहिया हुआ ढोलन राही जी आवाज़ में ही सुहिणो बाल गीत ऐं हाणे ॿुधूं था बाल कहाणी अरो हिकु समय जी ॻाल्हि आहे राजकुमार सिद्धार्थ हिकु ॾींहुं बाग में वण हेठां वेठो हो ओचितो ई हुन जे हिंज में हिकु घायल हंस अची किरियो घायल हंस तकलीफ़ विचां फतकी आयो हो सिद्धार्थ त हो ई दयालु हुन हंस जा ज़ख़्म धोता ऐं खेसि दवा लॻाई हुन खां पोइ सिद्धार्थ हंस ते आहिस्ते आहिस्ते हथ फेराइण लॻो हंस खे आराम मिलण लॻो थोरी देरि बैदि सिद्धार्थ वटि हिकु शख़्स आयो ऐं चयई हिन हंस खे मूं घायल करे किरायो आहे इहो मुंहिंजो शिकार आहे इन करे हिन ते मुंहिंजो हक़ आहे सिद्धार्थ खे समुझाईंदे चयो तो हिन खे मारण जी कोशिश कई आहे पर मूं हिन जो इलाज करे खेसि बचायो आहे इन करे हिन ते तुंहिंजो हक़ नथो बणिजे हिन ते मुंहिंजो हक़ आहे आख़िर इंसाफ़ लाइ मामलो राजा वटि पहुतो राज दरबार में ॿिन्ही पंहिंजे पंहिंजे ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो राजा ॿिन्ही जा बयान ॿुधी फ़ैसिलो ॿुधायो हिन पखीअ ते सिद्धार्थ जो हक़ आहे छो त मारण वारे खां बचाइण वारे जो हक़ वधीक हूंदो आहे उहो ई राजकुमार सिद्धार्थ अॻिते हली गौतम बुद्ध जे नाले सां मशहूर थियो हुन सॼी दुनिया खे प्रेम ऐं अहिंसा जो संदेश ॾिनो त ॿारो आयो न मज़ो तव्हांखे कहाणी ॿुधी हिन कहाणी खां तव्हांखे छा सिखिया मिली हा असांखे हिन कहाणी खां सिखिया मिली त असांखे जीवन ते दया करणी घुर्जे जेके जीव घायल आहिनि त हुननि जो उपचार करणु घुर्जे ऐं हुननि खे बचाइण जी पूरी कोशिश करणी घुर्जे ऐं हिन सां गॾु ई असां हिकिड़ो ॿियो बाल गीत था ॿुधूं

0: माण्हू हींअर तव्हां मज़ो माणे रहिया हुआ हिन सुहिणे बालगीत जो ऐं हिन खे आवाज़ ॾिनी आहे डोलंदाही। ऐं साथियूं हाणे वक़्तु आहे नंढड़े नंढड़े ॿारनि सां ॻाल्हाइण जो। साथियूं असां सां गॾु जुड़ी रहिया आहिनि नंढड़ा नंढड़ा ॿार जेके असांखे पंहिंजी कविताऊं ॿुधाईंदा, पंहिंजा आज़मूदो ॿुधाईंदा। त हलो ॻाल्हायूं था नंढड़े नंढड़े ॿारनि सां। हलो
1: हलो।
0: हा बेटा, केरु पियो ॻाल्हाए?
1: डिंपल तीर्थानी।
0: हा बेटा, तव्हां कहिड़े दर्जे में पढ़ंदा आहियो?
1: मां 6 दर्जे में पढ़ंदी आहियां।
0: तव्हांजा हॉबीस छा छा आहिनि?
1: मुंहिंजा हॉबीस खेलण, पढ़ण ऐं नचण ॿिया बि ॾाढा सारा आहिनि।
0: अरे वाह, तव्हां खेलण बि पसंदि कंदा आहियो, पढ़ण बि, नचण बि। अरे वाह, ऐं अॼु तव्हां असांखे छा ॿुधाइण चाहींदा?
1: मां अॼु वार तारा कविता ॿुधाइण चाहियां थी।
0: अरे वाह, तारे ते कविता, वेरी गुड। ॿुधायो ॿुधायो।
1: वारे तारा, गोल तारा, रोशन तारा, चिमके वारा, सांझे तारे निकरो था, उब सजे में पखड़ो था, चलको चिमको सारी रात, कजे अवाजी केरी बात, जोत अवाजी जे न हुजे, वाट ही करी वाट।

0: अरे वाह, ढो बढ़िया, तमाम सुठी तरीके से था इनी सुठी बैत बुदाई वो भी तारे ते है ना।
1: हेलो
0: हेलो, हां बेटा के पियो गलाए
1: बिंदु नानो मान्या नथानी
0: है। अरे वाह, मान्या नथानी, तमा केड़े दर्जे में पढ़ना आयो?
1: मां सत्ते दर्जे में पढ़ने आयो।
0: अरे वाह मान्या, त अज तमा असांजे उदाहरण बारन के छा बुदाना चाहिंदा?
1: मां बाडे तारा कविता जो बैत बुधायण चाहिंदस।
0: अरे वाह, बिल्कुल बुधायो।
1: इन बैत के जरिए असां के यह जान थे ती त एक तारो जो आकार डाढो नंडो ए गोल थींदो आए, देखो सजे उभ में पकड़े तो ए संजा जे वक्त निकरी करे चिमकी करे सबने जी राह रोशन करे तो ए माड़ुन के रोशनी देखारे पेंजी मंजिल ते पहुंचाण में मदद थो करे।
0: अरे वाह, ता त पूरी कविता जो सार बुधाए छड्यो। मन कविता बुधाई डिंपल तीर्थानी, आई तवा हुन जो सार बुधायो आए, है ना।
1: हां, मां जो खीर पिए कविता बुधाए ती चाहे।
0: अरे वाह वाह वाह, बुधायो बुधायो, बिल्कुल।
1: जो खीर पिए सो वीर थिए, दंड जोर वठन सुंदर सुहिणा लगन, अखी जोत वधे दाती सूह थिए, वड जोर वठन डिंग चुस्त थियन, खीर सफा सुठो वा ॾाढो मिठो, ॿार अचो पियो भर खीर वटियूं, ॾे खीर अमा पी पढ़न वञा।
0: अरे वाह, तव्हां त हेतिरो सुठी तव्हांखे बैत पूरी यादि आहे, माना खीर जी केतिरी सुठी महिमा ॿुधाई आहे की जेको खीर पीअंदो उहो वीर थींदो ऐं हुन जा हॾियूं बि मज़बूत थींदियूं, ॾंद बि मज़बूत थींदा ऐं पोइ तव्हांखे पढ़ाई बि करण में मदद मिलंदी, है ना। अरे वाह ट्विंकल, तव्हां कहिड़े दर्जे में पढ़ंदा आहियो? तव्हां अठे दर्जे में पढ़ंदा आहियो, अच्छा। अॼु तव्हां असांखे छा ॿुधाइण चाहींदा बेटा? अरे वाह, तव्हांखे सिंधियुनि में आङुरियुनि जा नाला बि ईंदा आहिनि, वेरी गुड, ॿुधायो बिल्कुल। अरे वाह, असां सां गॾु जुड़ी आहे लव्या।
2: बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, जिरे मिया करी वसकारा, छुटे छुटिन माथाने सारा, करीब साई पानी पानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, छटी पुराणी छटी पुराणी, जड़े छिए तो उसका व्याकुल, चवि छिटिए के बांदर मलकुल, जड़े छिए तो उसका व्याकुल, चवि छिटिए के बांदर मलकुल, ये उलावे में भी सानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, छटी पुराणी छटी पुराणी, हा कुल हिरको बंदूक वड़ाए, कुछ तो आही कोत बुधाए, हा कुल हिरको बंदूक वड़ाए, कुछ दो आही कोत बुधाए, पीके वाई जा घर जी रानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, बांदर मल जी छटी पुराणी, चैन हनंती आही कानी, छटी पुराणी छटी पुराणी।
0: अरे वाह बेटा, तव्हां त तमाम सुठी कविता ॿुधाई, ऐं हाणे असां सां गॾु जुड़ी वई आहे लवीशा।
3: कविता जो नालो आहे मेले में। हलो त हलूं मेले में, घुमण हलूं मेले में, हलो त हलूं मेले में, घुमण हलूं मेले में, मेले में चौडल हलन, फिरनियूं भीतियूं उते फिरन, मेले में चौडल हलन, फिरनियूं भीतियूं उते फिरन, खेल तमाशा खूब थियन, रांदी का भी जाम मिलन, खेल तमाशा खूब थियन, रांदी का भी जाम मिलन, मेले में रस ॾाढी आहे, मूंखे कोई परवाह न आहे, मेले में रस ॾाढी आहे, मूंखे कोई परवाह न आहे, पापा जो हथ पकड़ी हलंदसि पोइ मां घुम थी न मूर वेंदसि, पापा जो हथ पकड़ी हलंदसि पोइ मां घुम थी मूर न वेंदसि, हलो त हलूं मेले में।
0: अरे वाह लविशा।

0: जाम सुठी असांखे एॾी सुठी बैत ॿुधाई की मज़ो ई अची वियो. शाबाश बेटा, तमामु घणी ख़ुशी थी जो हेॾा नंढा नंढा ॿार सिंधियत जे बारे में हेतिरी सुठी ॼाण रखनि था. तव्हां असां खां ॻाल्हायो बेटा, असांखे तमामु ख़ुशी थी. तव्हांखे ढेर सारी शुभकामनाऊं ॾियूं था की तव्हां पढ़ो लिखो वधो विझो ऐं गॾो गॾु पंहिंजी सिंधियत खे बि अॻियां वधायो, सिंधी भाषा खे वधायो ऐं सिंधियत खे वधायो. ठीकु आहे बेटा?
1: असां
0: गीत गाइण चाहियूं था. अरे अरे वाह, गीत बि गाइण चाहियो था? बिल्कुलु बिल्कुलु, गायो गॾु.

अरे वाह बेटा, ॾाढो तमामु सुठो तव्हां असांखे गीत ॿुधायो ऐं तव्हां हमेशा ख़ुशि रहो ऐं असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधंदा रहो। ऐं ॿारहूं अॼु यानी 19 जुलाई जो असां हर साल बैंक राष्ट्रीयकरण ॾिहाड़ो मल्हाईंदा आहियूं। हीउ ॾींहुं भारत जे आर्थिक ऐं वित्तीय इतिहास में हिकु ऐतिहासिक मील जो पथर आहे। 19 जुलाई 1969 जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जे नेतृत्व में भारत सरकार देश जे खास निजी वाणिज्यिक बैंकुनि जो राष्ट्रीयकरण कयो। हिन सां दूर दराज ऐं ग्रामीण इलाक़नि ताईं बैंकिंग सेवाउनि जी पहुच पहुती, खेती ऐं नंढे वापारियुनि खे सवलाईअ सां लोन मिलण लॻो ऐं बैंकूं आम जनता जे सामाजिक ऐं आर्थिक कल्याण खे मथे रखण लॻियूं। साथियों हलंदे हलंदे हिकिड़े ॿिए सुहिणे गीत जो मज़ो माणो।

0: असाया सिंधी प्रोग्राम बुधन था चाहो पर कदें तमा दुकान ते आयो कदें ऑफिस में कदें मार्केट में तायो त कदें सफर प्या कयो त रेडियो सेट के मिस कंदा आयो हन पर हाणी सिंधी प्रोग्राम बुधन जी राह में ईंदड़ सब मुश्किलों आसान करे रहयो आहे तवन जी हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल हाँ यो मोबाइल तवा के असाना सिंधी प्रोग्राम बुधाए सगंदो दुनिया जे कहीं भी कुंड में दुबई में हुजो स्पेन में अमेरिका में या अफ्रीका में हर जगह ते तवा बुधी सगंदा पेंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तवा के करणो बस एत्रो ही आहे त जिए तवा बिया एप्स डाउनलोड कंदा आयो बस ई प्ले स्टोर ते वणो ए सर्च वाली जगह ते टाइप करो एन ई W S O N A I R यानी News on Air एवने के इंस्टॉल करो इंस्टॉल करने ही तमा के मोबाइल जी स्क्रीन पे थोरो ही हेट प्रसार भारती जो लोगो नजर इंदव ए तमा के उनके ओपन करनो आहे ओपन करना त सामू पहली खाबे पासे लाइव रेडियो ए साजे पासे लिसन न्यूज लिखल नजर इंदव तहां लाइव रेडियो के क्लिक कंदा तो उते ही का लंबी फेहरिस्त नजर इंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रन जी तमा के उते ही सबनी खा मथे सर्च रेडियो चैनल लिखल पढ़ने में इंदव सर्च में तहां जी जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा बा चैनल्स नजर इंदव एक विविध भारती जयपुर यानी वीबीएस एबीओ हवा महल छपियल नजर इंदड़ असंजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अच्छी पोतासी सही जगह ते हैं ना हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते कहाँ उदी सगना आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सब प्रोग्राम ए सिंधी प्रोग्राम उदी सगना मंगल विस्पर ए आर्थवार जिदी ने जो बारी लगी दही मिंटे ते पर सामी बुधना रहो बिना नागा असंजा सिंधी प्रोग्राम पहंजे मोबाइल ते मंगल विस्पत ए आर्थवार जेडी दिने बारी लगी दह मिंटे ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गद
1: साथियों हने वक्त थी हुआ है प्रोग्राम की खत्म करने जो मरी गर जानी थी दी सिंधी प्रोग्राम में तेसी ताई है मामलानी के दीदा मुकल नमस्कार।

यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:40 हुए, श्रोता सुनेंगे फिल्म से।

0: आपने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
0: कार्यक्रम का अगला गीत बेटा फिल्म से है, स्वर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का। गीत के बोल समीर के हैं,

प्रेम संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए साजन फिल्म का गीत, स्वर है कुमार शानू और अलका याग्निक का। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत नदीम सुरन का है।

साजन फिल्म में अलका याग्निक और कुमार शानू के वॉइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का धन्यवाद का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोलो मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमें FM चैनल

0: पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई की मान्यता को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। हालांकि बाद में विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का आज से जयपुर में आयोजन हो रहा है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी करेंगी। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश भी मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश से वेडिंग, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और वेडिंग डेस्टिनेशंस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाना है। मौसम विभाग के प्रदेश के 15 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा धौलपुर, अलवर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। हालांकि प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। इससे गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से पहलगाम और बालटाल से रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मायामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स यानी ALMM लिस्ट 2 की नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। नवीन और नवीकरणीय

0: ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस नीति की समय सीमा में कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इस साल 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए। श्रोता सुनेंगे महिला जगत। प्रस्तुत करते हैं बिंदु शर्मा और कोमल

0: प्रोग्राम सुनने वाले हमारे सभी सखियों को मेरा स्नेह भरा अभिनंदन। मैं हूँ कुमल पुरोहित।
1: और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आप सभी का महिला जगत में हार्दिक स्वागत।
0: बिंदु जी, कहते हैं जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। किसी के हिस्से जिम्मेदारियां ज्यादा आती है तो किसी के हिस्से संघर्ष आता है। लेकिन एक बात मैंने हमेशा महसूस की है, हर महिला के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जिसका एहसास उसे तब होता है जब परिस्थितियां उसे मजबूत बनने का अवसर देती है।
1: बिल्कुल, कई बार हम अपने ही सामर्थ्य को कम आंक लेते हैं। हमें लगता है कि शायद ये काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहला कदम बढ़ाने के साथ ही रास्ते बनने लगते हैं और हौसले भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर आज आपके मन में कोई सपना है, कोई नई शुरुआत करने की इच्छा है, या फिर जीवन की किसी चुनौती ने आपको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, तो बस इतना याद रखिए, आपकी रुकना हारना नहीं होता है। कभी कभी रुकना खुद को और मजबूत बनाने भी होता है।
1: और जब एक महिला खुद पर विश्वास करना सीख जाती है तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद बन जाती है।
0: बिल्कुल, तो आइए आज भी कुछ पल अपने लिए निकालते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं, कुछ नए विचारों को अपनाते हैं और खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं हर दिन कल से बेहतर बनाने का, क्योंकि बदलाव की सबसे सुंदर शुरुआत खुद से होती है।
1: और सुंदर शुरुआत हम करते हैं अपने प्रोग्राम के इस प्यारे से सुंदर से गीत के साथ।

जी पिछले हफ्ते मैं बैंक गई थी, वहाँ एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ आई थी। काम पूरा होने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, पहले तो बैंक का नाम सुनकर भी डर लगता था, लेकिन अब अपनी पेंशन भी खुद निकाल लेती हूँ और पैसे भी खुद

0: लेती हूँ। उनकी बात सुनकर मन सचमुच बहुत खुश हो गया।
1: बिल्कुल कोमल, और ऐसी तस्वीर अब सिर्फ शहरों में नहीं है बल्कि गांव में भी देखने को मिलती है। आज महिलाएं बैंक में अपना खाता खुलवा रही हैं, बचत कर रही हैं, डिजिटल भुगतान कर रही हैं और अपने छोटे छोटे व्यवसाय भी चला रही हैं।
0: सही कहा आपने, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बैंकिंग सेवाएं हर किसी की पहुँच में नहीं थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बैंक तक पहुँचना आसान नहीं था। बिल्कुल
1: जी हाँ, इसी सोच को बदलने और बैंकिंग सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने की दिशा में बैंक राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके बाद बैंक गांव-गांव तक पहुंचे और समाज के हर वर्ग को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने का रास्ता खुल गया, और खासकर बहनों के लिए।
0: बिल्कुल, और जब बैंक लोगों के करीब आए तो महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। पहले जहां घर की बचत अक्सर संदूक या गुल्लक तक सीमित रहती थी, वही अब वही बचत बैंक खाते में सुरक्षित रहने लगी। इससे महिलाओं में आर्थिक आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
1: सही कहा अंकुल आपने, आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाएं बैंक से जुड़कर स्वरोजगार कर रही है। कोई सिलाई का काम कर रही है तो कोई डेयरी भी चला रही है, कोई मसाले पापड़ अचार या अन्य कोई अपना उद्योग स्थापित करके अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। बैंकिंग सुविधाओं ने तो हमारी बहनों के सपनों को नई उड़ान दे दी है।
0: आज जनधन खाते, प्रत्यक्ष लाभ उत्करण, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाओं ने महिलाओं के लिए आर्थिक लेनदेन को पहले से कहीं अधिक आसान भी बना दिया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है, जिससे पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ती है।
1: ये तो बहुत खुशी की बात नहीं, और इतना ही नहीं है कोमल, आज जो हमारी बहने हैं ना, वो सिर्फ बचत ही नहीं करी बल्कि निवेश, बीमा, पेंशन योजना और वित्तीय योजना बनाने जैसे विषयों पर भी रुचि ले रही है। ये आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक सकारात्मक कदम का संकेत भी है।
0: बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है बिंदु जी, बैंकिंग से जुड़ते समय हमें साइबर सुरक्षा का भी उतना ही ध्यान।
1: ये विषय तो महत्वपूर्ण है।
0: अपना एटीएम पिन, ओटीपी या बैंक से जुड़े गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी आर्थिक हानि से बचा सकती है।
1: सही कहा, आर्थिक रूप से सशक्त होना केवल कमाई करना नहीं बल्कि अपने पैसों का सही प्रबंधन करना और सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है।
0: बैंक राष्ट्रीयकरण ने सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार नहीं किया बहनों, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक भागीदारी को भी नई दिशा दी है। आज की महिलाएं अपने सपनों को सिर्फ देखती नहीं है बल्कि उन्हें पूरा करने की आर्थिक क्षमता भी रखती है। यही किसी भी सशक्त समाज की सबसे बड़ी पहचान है।
1: हाँ, जब इरादे मजबूत हो और आत्मविश्वास साथ हो तो हर चुनौती एक नए अवसर के रूप में बदल जाती है। इसी हौसले और अपने आगे बढ़ने के जज्बे को सलाम करता हुआ हमारा गीत सुनिए।

0: मैंने जी कल सुबह के लिए पार्क में टहलने जाती हूँ, तो कल सुबह पार्क में टहलने गई वैसे ही जैसे हमेशा जाती हूँ, तो वहाँ दो महीने बातें कर रही थी, एक ने दूसरे से कहा पहले तो 5 चक्कर आराम से लगाने दीदी, लेकिन अब घुटनों के दर्द की वजह से 2 चक्कर भी नहीं लगा पाती, तो मुश्किल लगती है वो 2 चक्कर भी, तो उनकी बात सुनकर लगा कि शायद ये परेशानी आज बहुत आम हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और दुख की बात तो ये है कि हम अक्सर इसे बढ़ती उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हर जोड़ों का दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता या उम्र की वजह से होता ऐसा जरूरी नहीं है।
0: सही कहा आपने, आजकल कम शारीरिक गतिविधियां, घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करना या फिर बढ़ता वजन, गलत खान पान और कभी कभी शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी भी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ये सब चीजें हो सकती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज हम बात करेंगे कि जोड़ों के दर्द क्यों होता है एक बात, और कैसे सही व्यायाम व संतुलित पोषण से इससे काफी हद तक हमें आराम मिल सकता है।
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है बहनों कि अगर दर्द लगातार बना रहे, सूजन हो, चलने फिरने में बहुत परेशानी हो या दर्द अचानक बहुत बढ़ जाए तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है, खुद ही खुद के डॉक्टर नहीं बनना है आपको, और हर दर्द का इलाज एक जैसा नहीं होता है।
1: सही कहा, लेकिन सामान्य जोड़ों के दर्द में नियमित और हल्का व्यायाम लाभदायक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि दर्द तो बिल्कुल आराम करने से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है, जबकि लंबे समय तक हम बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं तो भी हमारे जोड़ों में जकड़न बढ़ जाती है।

0: है और दर्द होने लग जाता है ना।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली और है, व्यायाम हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें और विशेषज्ञ की सलाह से करना चाहिए। रोजाना हल्की सैर करें, स्ट्रेचिंग करें, योग या घुटनों और कमर के लिए बताए गए जो आसन है, व्यायाम है, जोड़ों को लचीला बनाए रखने में वो भी बहुत मदद करते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप। योग जो हमारी प्राचीन संस्कृति या धरोहर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन और भी बहुत सारे हैं जैसे कमर के लिए और सारे इलाज हैं इसमें योग में। तो डॉक्टर की सलाह के बिना ये नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे करना चाहिए ताकि हमें आसानी से लाभ पहुंच सके। लेकिन यदि दर्द अधिक है तो जबरदस्ती कोई भी योग नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और अब बात करें अगर पोषण की तो अक्सर लोग क्या है दवा तो समय पर लेते हैं लेकिन मुझे भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मजबूत हड्डियां और जोड़ों के लिए सही खान पान बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने भोजन में दूध लीजिए, दही लीजिए, पनीर, रागी, तिल, चना, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं आप, मौसमी फल लीजिए और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें अपने भोजन में। साथ ही शरीर में मानो विटामिन डी के लिए रोज कुछ समय सुबह की धूप भी लें।
0: और हाँ, अगर वजन ज्यादा है तो उसे धीरे धीरे नियंत्रित भी करना जरूरी है क्योंकि शरीर के अतिरिक्त भार जो होता है वो भी घुटनों पर ही असर डालता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना, अच्छी नींद लेना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना भी बहुत महत्वपूर्ण है कोमल।
1: बिल्कुल, याद रखिए हमारा शरीर हमें समय समय पर संकेत देता है, अगर हम सही समय पर उन संकेतों को समझ लिए, नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें तो लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं।
0: क्योंकि बढ़ना ये हमारे हाथ में नहीं है लेकिन स्वस्थ रहकर उम्र बढ़ाना ये तो हमारे हाथ में है और ये जरूरी भी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही मस्त रह पाएंगे।
1: बिल्कुल, और सेहत का सफर भी मंजिल नहीं बल्कि रोज निभाई जाने वाली एक अच्छी आदत है। तो आइए हर दिन थोड़ा चलें, थोड़ा मुस्कुराएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी संदेश के साथ सुनते हैं ये गीत।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: खूबियां हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: जोड़ों के दर्द हमारी अभिवार्ता सुनी बातचीत। इसके साथ ही एक दर्द और भी है जो अनकहा है। आप समझ ही गए होंगे हमारे समाज में किए जाने वाला पुत्र और पुत्री में अंतर। हाँ, एक अनकहा दर्द। बिल्कुल आप जान गए होंगे इस बात को कि मैं इशारा कर रही हूँ बेटियों के बारे में।
1: बिल्कुल मनोज जी, बेटियां केवल परिवार की खुशियों का आधार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी मजबूत नींव है। उनके सपनों को सम्मान और अवसर देना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसी महत्वपूर्ण विषय बेटियां हैं अनमोल पर अपने विचार साझा कर रही हैं वार्ताकार श्रीमती नीलू शर्मा। आइए सुनवाते हैं आपको ये वार्ता।
2: बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। हमारे रीति रिवाज, नैतिक मूल्य एवं परंपराएं इसका अलंकार है। बुजुर्गों का मान सम्मान इसमें है, अपने से छोटों के प्रति प्यार इसकी आत्मा है। हमारे जीवन का आधार सत्य, अहिंसा व प्रेम है। हमारे देश में दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जिस कन्या को हमारी संस्कृति पूज्य मानती है, जिसकी सेवा, त्याग एवं ममता की छाया में पलकर पूरा परिवार विकसित होता है, उसके आगमन पर पूरे परिवार में मायूसी एवं शोक के वातावरण का व्याप्त हो जाना विडंबनापूर्ण अचरज ही है। हमें से कुछ लोग माँ की कोख में ही उसका कत्ल करवा देते हैं। नवरात्रि में हमारे समाज में कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन समाज में कुछ माता पिता ऐसे भी हैं, जब उन्हें पता चलता है कि माँ की कोख में कन्या भी है, उस मासूम की कोख में ही हत्या करवा दी जाती है। भावी माँ जो भविष्य में गर्भ धारण कर सृष्टि का विस्तार करती है, जन्म से पहले ही उसको मौत के हवाले कर दिया जाता है। माता पिता जो पृथ्वी पर भगवान का रूप है, बच्चों को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। चिकित्सक जिसे भगवान का दूत माना जाता है, जीवन रक्षा की शपथ लेने वाले चिकित्सक ही कन्या भ्रूणों के हत्यारे बन बैठे हैं। यह भली भांति जानता है कि भ्रूण हत्या इंसान की हत्या से भी बढ़कर है। एक इंसान अपने जीवन में कोई अपराध कर सकता है, लेकिन एक अजन्मे मासूम का क्या अपराध हो सकता है? एक नन्हा जीव माँ की कोख में सुंदर संसार में आकर मासूम तिलकारियां बनने की कल्पना से आनंदित हो रहा है, अपने भाई बहनों से खेलने, माँ के आंचल को छूने के सपने से।

लेकिन इसकी जन्मदायिनी कोख कब्र साबित होती है। माँ के गर्भ में एक टीके द्वारा मारा जाता है। टीके के द्रव्य से पहले चमड़ी को जला दिया जाता है। उस जीव ने जीवित अवस्था में द्रव्य को सूंघा, निगला और वह जल गया। इस अत्याचार के बाद एक नलिका द्वारा हवा के दबाव के साथ खींचकर गर्भाशय से बाहर निकाला गया। वह जीव मारा जा चुका था। ऐसे लग रहा था मानो अपनी माँ से कह रहा हो, जितना अत्याचार मुझ बेगुनाहों पर किया है, भगवान के लिए किसी और पर मत करना। क्या हम में अब भी कुछ इंसानियत का अंश है? क्या हम इस मासूम पुकार से द्रवित होंगे? जो लोग किसी कारणवश कन्या भ्रूण को समाप्त नहीं कर पाते हैं, वे अपनी बेटियों को जन्म के बाद बेच देते हैं या लावारिस छोड़ देते हैं। आज देश में हजारों बेटियां कोप में ही नष्ट कर दी जाती है। समाज में यह बुराई महामारी के रूप में फैल रही है। कन्या जन्म के साथ ही उस पर अन्याय एवं अत्याचार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपने जन्म के परिणामों एवं जटिलताओं से अनभिज्ञ उस नन्ही सी जान के जन्म से पूर्व या बाद में उपेक्षा, यहाँ तक कि हत्या भी कर दी जाती है। इसका कारण क्या है? हम बेटियां क्यों नहीं चाहते? नारी का मान सम्मान ना करके हम नारी को बोझ क्यों समझते हैं, तुच्छ समझते हैं? यह भारतीय संस्कृति नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, निश्चित रूप से संकीर्ण मानसिकता का शिकार है। परिवार में बहू व बेटी के लिए अलग अलग सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। हमारे घरों में आज भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। पुत्र जन्मा तो बाहर आ गई, हंसी खुशी, राग रंग, बधाइयां, बोझ, दावतें और ना जाने क्या क्या। पुत्री जन्मी तो पतझर दुख, निराशा और भाग्यहीनता के उच्छावास। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी की दयनीय दशा की कहानी यहीं से शुरू होती है और अंत तक दुखांत ही चली जाती है। शायद इस सोच के पीछे भावना यही है कि लड़के के पीछे बहू आती है। बेटी के पिता को अपनी बेटी का रिश्ता तय होते ही सामाजिक रीति रिवाज निभाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद शादी से पहले हर त्योहार पर बेटी के ससुराल में मिठाई, कपड़े आदि दिए जाते हैं। फिर शादी के बाद आने वाले त्योहारों और फिर लड़की के बच्चा होने पर उसके रीति रिवाज निभाने तक लड़की के माँ बाप की कमर सीधी भी नहीं हो पाती कि दूसरी बेटी विवाह योग्य हो जाती है। समाज में यह भी मान्यता है कि माता पिता के मरने के पर बेटा क्रियाकर्म करेगा। बेटी को यह अधिकार नहीं है। बेटा ही वंश आगे बढ़ाता है, बेटी नहीं। माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगा, उनका सहारा बनेगा। हालांकि आज के संदर्भ में पुत्र को बुढ़ापे की लाठी मानना एक मृग तृष्णा ही है। लड़कियों के विवाह में दहेज की समस्या के कारण भी माता पिता कन्या जन्म का स्वागत नहीं कर पाते। स्थिति उस समय दुखद होती है जब वर के माता पिता वधू के परिवार वालों को ऐसा करने से रोकते नहीं है। अपेक्षाओं के अनुसार खातिरदारी नहीं होने पर वधू को ताने मारते हैं। लड़की का पिता जिसने अपने अंश व जिगर के टुकड़े को वर को सौंप दिया

0: समझो सर्वस्व दे दिया। उसके बाद देने के लिए उसे क्या लिया जाता है? मांगने वालों को यह पता नहीं कि देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर और लेने वालों का हाथ हमेशा नीचे रहता है। आज के भौतिक एवं प्रतिस्पर्धा के युग में हमें इन रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़कर खुली मानसिकता से समझना होगा कि बेटे एवं बेटी के प्रति सोच में अंतर सही नहीं है। सदियों पुरानी प्रचलित रीति रिवाजों को समय के साथ बदलना होगा ताकि समाज को ऑक्सीजन मिल सके। वक्त रहते हमने स्वयं की अपनी सोच को नहीं बदला तो वह दिन दूर नहीं जब समाज इतना बिखर जाएगा और स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाएंगी कि हम चाहकर भी अपने समाज को संवार नहीं पाएंगे।
1: सखियों, ये थी वार्ताकार श्रीमती मीनू शर्मा जिन्होंने बेटियां हैं अनमोल विषय पर अपने सार गर्भित विचार हमारे साथ साझा किए। आशा है ये वार्ता हम सभी को बेटियों के सम्मान शिक्षा उनके उज्जवल भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा देंगी। और इसी प्रेरणा के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मधु चैनल की प्रस्तुति।

0: ही गया है पल। जो कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस्ट ओटीटी

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मुझे कुछ दिन पहले क्या है, मेरे एक दोस्त है, वो नई नई मूवी बनी है, तो उनसे बात हो रही थी एक दिन, तो उनसे उसने जो हंसते हुए कहा कि बच्चे का तो सब हाल पूछते हैं लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि माँ कैसी है। उसके बाद सुनकर लगा कि सच में माँ बनने के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा अपनी ही सेहत को पीछे छोड़ देती है।
3: बिल्कुल सही कहा, ऐसे समय में सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि वह बढ़ा हुआ वजन। कई महिलाओं को लगता है कि जब पहले जैसी वो फिर से

0: ये फिटनेस कर पाएगी या नहीं या कर ही नहीं पाएगी, ऐसा उनको लगने लग जाए
1: बिल्कुल। या फिर कुछ महिलाएं बिंदी जी जल्दी वजन कम करने की कोशिश में खाना कम कर देती हैं, सख्त डाइट शुरू कर देती हैं, या कोई बिना सलाह के तरह तरह के उपाय अपनाने लगती हैं, जबकि ये समय शरीर को संभालने का और पोषण देने का होता है।
0: देखो ये तो वो अपने साथ अन्याय कर रही है, आप सही भी कह रही है कि ऐसा करती है, तो आपने इसलिए ये बात करेंगे कि गर्भावस्था के बाद वजन कम कैसे करें, क्योंकि ये जो तरीके ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे तरीके से माँ भी स्वस्थ रहे और यदि वह स्तनपान करा रही है तो बच्चे के पोषण पर भी कोई असर न पड़े, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबसे पहले ये समझाना जरूरी है दोनों कि प्रसव के तुरंत बाद पहले जैसा वजन हो जाना ये संभव नहीं है और ना ही कोई जरूरी है, क्योंकि शरीर को गर्भावस्था और प्रसव के बाद सामान्य होने में बहुत समय लगता है, इसलिए खुद की तुलना किसी और से करने के बजाय अपने शरीर को समय जरूर दीजिए।
0: बिल्कुल, अगर डॉक्टर ने अनुमति दी है तो धीरे धीरे हल्की सैर की शुरुआत की जा सकती है, इसके बाद समय के साथ साथ हल्के व्यायाम, स्ट्रेचिंग और योग में योग को भी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता
1: है। और याद रखिए दोनों, वजन कम करने का मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है, इस समय शरीर को पौष्टिक भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, दालें, दूध, दही, मौसमी फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शरीर को ताकत भी देते हैं और धीरे धीरे वजन संतुलित करने में भी मदद करते हैं।
0: अगर माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है तो पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सलाह देते हैं कि कम खाओ ताकि वजन कम होगा, लेकिन यह सही तरीका नहीं है पाना
1: जी। बिल्कुल, इसके साथ ही अच्छी नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि छोटे बच्चे के साथ पूरी नींद लेना आसान नहीं होता, लेकिन जब भी मौका मिले थोड़ा आराम जरूर करें, तनाव और नींद की कमी भी वजन कम होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
0: और एक बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरों से अपनी तुलना बिल्कुल भी ना करें, हर महिला का शरीर अलग होता है, हर किसी को रिकवरी करने में समय भी लगता है जो कि अलग अलग होता है।
1: बिल्कुल, मां बनने के बाद सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ होना, उसके बाद ही फिट होना। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, उसे समय दीजिए और छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़िए।
0: याद रखिए माँ स्वस्थ होगी तभी तो परिवार स्वस्थ होगा, और इसलिए जल्दबाजी नहीं, सही जानकारी, संतुलित आहार, नियमित गतिविधियां, व्यायाम और इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है, ताकि वजन कम करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल, क्योंकि फिटनेस को मंजिल नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का एक सुंदर सफर है, और बिंदु जी हर माँ अपने परिवार का सबसे मजबूत सहारा होता है, ये हम सभी जानते हैं, इसीलिए अपनी सेहत को भी उतनी ही प्राथमिकता दीजिए जितनी अपने अपनों को देते हैं। आइए इसी आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: सखियों, आजकल अक्सर सुनने में आता है कि बच्चों में स्मरण शक्ति और एकाग्रता नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए आजकल शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता न करे। कहता है मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन परीक्षा में सब भूल जाता है। इन सब को याद रखने के लिए सबसे ज्यादा खेल कूद के साथ साथ योग बहुत जरूरी है और ध्यान जरूरी है ना कोमल। ध्यान अगर हम रखें, ध्यान अगर हमारा सही चल रहा है, 5 मिनट तक हम बैठ कर आंखें बंद करके ध्यान अगर करते हैं तो बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। डॉक्टर की सलाह तो आपको लेनी ही लेनी है, साथ में आपको ध्यान भी करना है।
1: बिल्कुल बिंदु जी, और जब मन शांत होता है ना तो नई बातें समझना और उन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि कई स्कूलों में भी आजकल प्रार्थना के साथ साथ कुछ मिनट का ध्यान और श्वास जो अभ्यास है वो भी करवाया जाता है। और लेकिन बिंदु जी, सिर्फ ध्यान ही काफी नहीं है। अगर बच्चा देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है तो, और पौष्टिक भोजन नहीं खा रहा है तो खेलने का समय अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उसकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। वो रात को अगर रूम में मोबाइल लेकर जाते हैं और उसे चलाते हैं तो बच्चों का ध्यान भी उधर जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि निज पर शासन फिर अनुशासन, माता पिता खुद को अनुशासित करें और अनुशासित रहे तो बच्चे भी होंगे।
1: बिल्कुल, और हर बच्चा अपने साथ अनगिनत जिज्ञासाएं, सपने और सीखने की एक अनोखी क्षमता लेकर आता है। भानु, हमारा काम सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं बल्कि ऐसा वातावरण देना है जहाँ उसका मन शांत रहे, एकाग्रता बढ़े और वो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित हो। अब जाने का समय हो चला है भानु, तो आपको
0: आइए सखियो अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं जो न केवल हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दें।
1: बिल्कुल, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के महिला जगत से मैं कुमार पुरोहित
0: और मैं बिंदु शर्मा
1: इजाजत चाहेंगे।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुतकर्ता थी बिंदु शर्मा और कोमल पुरोहित। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दिन के दो बजने वाले हैं श्रोता सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout over invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks

0: संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश

0: संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया, रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप

0: न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लंदन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारू चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आपने आनंद महल फिल्म का गीत सुना, स्वर था यशोदास का। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया था सलील चौधरी ने। लीजिए सुनिए हमराज फिल्म का गीत, आवाज महेंद्र कपूर, गीत के बोल शहीद लुधियानवी के हैं, संगीत रवि ने दिया है।

आपने हिना फिल्म का गीत सुना, योगेश्वर था लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों का, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में उपकार फिल्म का गीत। गीत के बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

प्रेम संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में एक दूजे के लिए फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दूजे के लिए फिल्म में लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में, माफ कीजिएगा, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौर भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में सभा नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जंजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पौंडा में 7

0: दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के समय 5:05 हुए हैं। आरंभ होता है कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम लेकर आए हैं माधव व्यास और सलोनी पारिक।

0: कितनी खूबसूरत होती है रील की दुनिया। इश्क पर चार शायरियां भी मिल जाती है तो ओशो के दो बयान भी, नेताओं की बातें मिल जाती है तो आलोचकों के सवाल भी, पढ़ाई के लिए अगर कुछ अच्छा देखना हो तो पावरफुल स्टडी टिप्स भी मिल जाती है, और अगर अच्छी मूवी के लिए सजेशन चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाते हैं। आसमान हमेशा एस्थेटिक मूड में रहता है, संसार सारा हरा भरा रहता है, और एक मध्यम से धूम बैकग्राउंड में चलती हुई जिंदगी को एकदम चॉकलेटी बना देती है। कितना सौंदर्य है यहाँ पर, और हजारों सौंदर्य प्रसादन भी। मगर दोस्तों, इन सबसे बाहर निकल के जब मैं मेरे सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखता हूँ तब मुझे याद आता है कि बहुत से काम अभी बाकी पड़े हैं जो मुझे करने हैं। रसोई में जाता हूँ तो लगता है कुछ सामान लाना अभी भी बाकी है। घर से बाहर निकलता हूँ तो पता लगता है शायद थोड़ी और मेहनत की जाती तो आलम कुछ और भी हो सकता था। और जब नजर अपनी जेब पर जाती है तो अर्थव्यवस्था का अंक गणित भी बिगड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन कितना सुंदर लगता है सब जब मैं रील्स की दुनिया में होता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधव, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी की बेहद ही विशेष पेशकश और आप सबका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: दोस्तों, हम सब लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मगर अधिकतर समय हम हमारे फोन पर बिता देते हैं। औसतन एक भारतीय व्यक्ति लगभग 4.5 घंटे के करीब मोबाइल फोन पर बिताता है, और पूरी दुनिया की बात करें तो ये डाटा लगभग 5 घंटे के करीब हो जाता है। और जिस आवाज को आप अभी सुन रहे हैं वो है मेरी यानी सलोनी पारिक की। दोस्तों, आज हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि कैसे इस फोन के बढ़ते यूज का एक और पहलू भी है जो टेक्निकल चीजों से थोड़ा पीछे छूट चुका है मगर हम सबके साथ रोज हर पल घटता है और हमको पता भी नहीं लगता। जैसे अक्सर हम हर 1 जनवरी को नया रूटीन बनाते हैं, हर मंडे को हम सोचते हैं कि इस हफ्ते से या आज से ये एक पॉजिटिव शुरुआत मैं करूंगी।
0: बिल्कुल,
1: वह विचार या वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया तक ही रह जाता है। बिल्कुल, यानी सिर्फ ख्यालों

0: अभी रह जाता है, धरातल पर क्यों नहीं आ पाता।
1: बिल्कुल सलोनी, बहुत सही कह रही हो तुम। और दोस्तों, ऐसी बात भी नहीं होती कि हमारा करने का मन नहीं होता। करने का मन भी होता है, निश्चय भी होता है, संकल्प भी होता है, मगर फिर भी वो विचार जो है वो मूर्त रूप नहीं ले पाता। और ऐसा ना होने के पीछे दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है हमारी विल पावर का कमजोर होना, यानी कि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति का कमजोर होना।
0: बिल्कुल सही कहा माधव। दोस्तों, इच्छा शक्ति और सफलता एक दूसरे के समांतर चलती है। बिना इच्छा शक्ति के सफलता प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो सकता है।
1: एकदम सही कहा तुमने सलोनी। और ना, तुमने कई दफा ऐसा महसूस भी किया होगा कि जब अपन किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं ना, लेकिन इसमें दोस्तों चाहने का मतलब ये नहीं है कि आप बस ये चाहें कि आपकी कोई जॉब लग जाए, या आप रात को सोएं और अगले दिन सुबह फोर्ब्स की लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ऐसे नहीं। आप बहुत सामान्य चीजें बहुत तीव्रता के साथ चाहते हैं, जैसे अचानक हम किसी का नाम लेते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका फोन आया होगा, या अक्सर हम ऐसा किसी का सोचते हैं कि शायद गेट के बाहर वो खड़े होंगे और हम पाते हैं कि अक्सर सामने वो ही होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इसके पीछे एक मत ये भी है कि उस वक्त सबकॉन्शियसली उस चीज को इतनी तीव्रता से चाहा होता है कि वह चीज सामने आ जाती है।
1: बिल्कुल, दरअसल हम कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, इस बात को एक बहुत प्यारे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार 11 साल के परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु बाघ स्वामी से पूछा कि आप कैसे एक चीते को भी हरा देते हैं। तो बाघ स्वामी ने कहा कि मैं दरअसल चीते को चीता समझता ही नहीं हूँ, मैं चीते को मात्र एक बिल्ली समझता हूँ, और जब मैं उसे बिल्ली समझता हूँ तो मेरी ताकत उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है।
0: तो माधव, इस पर योगानंद जी ने कहा होगा कि हो सकता है आप तो उसे बिल्ली समझ लेते हैं, मगर वास्तविकता में तो वो चीता ही है और उसके अंदर उसकी चीते की शक्ति भी है।
1: बिल्कुल सलोनी, और इस बात पर बाघ स्वामी ने जो जवाब दिया ना, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक हो सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी इच्छा शक्ति एक हथौड़ी के समान होती है। जैसे एक हथौड़ी में कितनी ताकत होगी ये उसको इस्तेमाल करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वैसे ही आपको सफलता मिलेगी नहीं, ये आपकी इच्छा शक्ति की ताकत पर, यानी कि आपके इच्छा शक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल सही। तो दोस्तों, हथौड़ी पर जितना ज्यादा जोर लगाया जाता है वह उसी तरह से काम करती है, भले ही वह 5 किलो की हथौड़ी ही क्यों न हो, वो एक भारी भरकम दीवार को तोड़ने की क्षमता रखती है। वैसे ही अगर आप बहुत अधिक इंटेंसिटी से, तीव्रता से किसी चीज को जानेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे वह आपकी जिंदगी में ऐसे मौके लेकर आना शुरू कर देगी कि अगर आप उसके पीछे प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, या मैं यूं कहूं कि आपको वह चीज मिलना शुरू हो जाएगी।
1: बिल्कुल सलोनी, मगर ना सबसे ज्यादा इस पूरी चीज में जरूरी ये होता है कि हमारा किसी चीज को पूरे दिल से कितनी तीव्रता से चाहा गया है। और यहीं पर आज के समय में सबसे ज्यादा हम गलती कर बैठते हैं, और वो है लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम।
0: बिल्कुल,
1: हम स्क्रीन टाइम से, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा ये जो कंटिन्यूस फोन यूज करना है, इस स्क्रीन टाइम से हमारा टेंशन स्पेन, ये जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, ये बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हम किसी एक चीज पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते।
0: और नतीजतन कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ रही है। जीवन में खालीपन सा महसूस होने लग जाता है, भटकाव सा लगने लग जाता है, और ये सभी रिजल्ट है हमारा इतना ज्यादा फोन यूज करने का। यदि आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहे हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी जैसी चीजों को महसूस करते हैं, तो उसको ठीक करने का एक बेहद ही सरल तरीका है दोस्तों, अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। रोज सुबह उठकर 2 से 3 मिनट केवल शांत बैठे योग करेंगे तो और अच्छा होगा, वरना सिर्फ 2 से 3 मिनट शांत बैठे और गहरी सांसें लें, कुछ ना करें, कई बार कुछ ना करना भी बहुत अच्छा होता है।
1: बहुत सही कहा तुमने सुनोनी। अपने साथ समय बिताएं दोस्तों, अपनों के साथ समय बिताएं, जीवन का लक्ष्य खुद आप पाएंगे कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भी काम करें उसे पूरे मन के साथ करें, ये मान करके करें कि आप इसी चीज के लिए बने हैं, और किसी चीज के लिए आप बने हैं नहीं, ये आपको उस काम को करने के बाद ही पता लगेगा। इसके लिए एक बहुत शानदार सूत्र आचार्य चाणक्य ने भी अपनी किताब चाणक्य सूत्र में बताया। इसमें उन्होंने कहा कि निर्णय लो और फिर तीव्र इच्छा शक्ति से उस पर डट जाओ और पूर्ण रूप से उसके लिए प्रयास करो, सफलता तुम्हारा वरण करेगी।
0: तो आप भी आज से ही एक संकल्प लें कि अगर आपके जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और फिर उसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे, उसमें जुटेंगे, परंतु रुकेंगे तभी जब उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और फिर दूसरा लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि निरंतर चलना ही जिंदगी है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों जब तक हमारे पास जीवन है तब तक हमें

0: लक्ष्य बनाते रहना है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते रहना है। बस लक्ष्य बनाते समय इस बात का ध्यान रहे कि वो लक्ष्य किसके हित के लिए बनाए जा रहे हैं, और यदि उसमें समाज का हित भी शामिल हो जाएगा तो इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी।
1: और हाँ, हर यात्रा के मध्य में, शुरुआत में और अंत में यह हमेशा याद रखें कि वह यात्रा शुरू क्यों की गई थी।
0: बिल्कुल सलोनी, पर यात्रा के प्रत्येक मोड़ पर उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञ रहें जिन्होंने किसी भी तरीके से इस यात्रा में आपको हंसाया है, आपको खुश किया है, आपको खुशी दी है और आपके संकल्प को सही सिद्ध करने का काम किया है। और हाँ, आज अपने फोन का स्क्रीन टाइम जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये जो धरती है ये गोल है, और ये जो हमारा स्क्रीन टाइम है ये हमारे दिमाग को इतना चक्कर दे के घुमाएगा कि हम इस पूरी धरती के चक्कर लगाते ही रह जाएंगे और हमारे लिए पूरी दुनिया सिर्फ गोलमाल बन के रह जाएगी।

0: कितनी गोल है ये दुनिया और ऐसी इसकी बातें भी, मगर आप जानते हैं गोल बातों को या घुमाई हुई बातों को सरल किया जा सकता है सिर्फ एक तरीके से, और वो है ज्ञान का तरीका, विवेक का तरीका। जब आपके अंदर धैर्य और विवेक धीरे धीरे आने लगते हैं तो आप खुद जानने लगते हैं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स और काफ़ी जटिल चीज़ों को भी केवल बहुत ही आसानी से सरल करके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का हमारे दिमाग में होना, और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम भी आकाशवाणी हमेशा आपके लिए करता है। इसके लिए हम आपके लिए लाते हैं एक क्विज सेगमेंट, जिसके अंदर हम आपसे पूछते हैं दो सवाल और उन सवालों के जवाब हम आपसे जानते हैं कार्यक्रम के अंत में। तो अब रेडी हो जाइए हमारे आज के सवालों के लिए। आज का हमारा पहला सवाल आपसे है,
1: बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं सवाल फिर से दोहराती हूँ, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसी के साथ हमारा आज का दूसरा सवाल है, टेलीविजन दर्शकों की पसंद और किसी कार्यक्रम की लोकप्रियता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द TRP का पूर्ण रूप क्या है? मैं सवाल फिर से दोहराती हूँ, टेलीविजन दर्शकों की पसंद और किसी कार्यक्रम की लोकप्रियता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द TRP का पूर्ण रूप क्या है?
0: तो बस अब जल्दी से अपने फोन का और अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए इसके जवाब ढूंढिए। हम बस यूं गए और यूं आए।
2: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इच्छा शक्ति और बड़े फैसलों की बात तो हो ही रही थी, सुनो क्यों ना एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की बात की जाए जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों को बदल दी। दोस्तों वो भी एक दृढ़ राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। आज 19 जुलाई है और आज का दिन हमारे देश के इतिहास में बेहद खास दिन है। आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, यानी कि बैंक नेशनलाइजेशन डे।
1: बिल्कुल सही कहा माधव ने दोस्तों, 19 जुलाई 1969 का वो दिन जब रातों रात भारतीय बैंकिंग सिस्टम का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया गया। लेकिन माधव आज के हमारे युवा श्रोताओं को इसके बारे में आखिर क्यों जानना चाहिए?
0: ये बहुत वाजिब सवाल है सलोनी। दोस्तों आज के हमारे युवा साथियों के लिए बैंकिंग का मतलब स्मार्टफोन पर बस एक टैप और UPI पिन है। लेकिन दरअसल 1969 से पहले हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय बैंक सिर्फ बड़े बड़े औद्योगिक घरानों या मैं यूं कहूँ रसूखदार लोगों और बड़े शहरों तक ही सीमित था।
1: मतलब एक आम आदमी, खेत में पसीना बहाने वाला किसान या कोई छोटा व्यापारी बैंक के दरवाजे तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता था।
0: बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था सलोनी। विडंबना यहाँ तक की थी कि बैंक में जमा पैसा आम जनता का था, लेकिन उसका फायदा सिर्फ चंद लोगों को मिल रहा था। और इसी बड़ी खाई को पाटने के लिए 19 जुलाई 1969 को बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस लाया गया,
1: और इसके तहत देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था।
0: बिल्कुल एकदम सही। और इसी एक ऐतिहासिक फैसले ने बैंकों को वातानुकूलित यानी कि सेंट्रलाइज AC जो बिल्डिंग्स होती है उससे निकालकर गांवों की कच्ची पगडंडियों पर झुग्गी झोंपड़ियों के पास ला करके रख दिया। रातों रात ग्रामीण इलाकों में नई शाखाएं खुलने लगी,
1: यानी कृषि और छोटे कुटीर उद्योग जिन्हें हम आज MSME कहते हैं उन्हें पहली बार प्राथमिकता के आधार पर लोन मिलने लगा।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही आम लोगों ने भी अपनी मेहनत की कमाई को बैंकों में सुरक्षित रखने की आदत शुरू हुई, क्योंकि अब उनके पैसों पर सरकार की पूर्ण गारंटी थी। साहूकारों के भारी भरकम ब्याज और शोषण से आम जनता को आजादी मिलने की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी।
1: और माधव आज जो हम इतने सारे युवाओं को अपने खुद के स्टार्टअप शुरू करते देखते हैं उसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं इसी

0: वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन की मजबूत नींव का सही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, 100% की बात कही है तुमने सलोनी। अगर उस समय वो साहसिक फैसला नहीं लिया जाता तो आज भी देश एक बहुत बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से पूरी तरीके से दूर होता।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप भी बढ़ती इकोनॉमी के साथ के अंदर जुड़े। और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक में अपना अकाउंट जरूर खुलाएं। और जैसा कि हमारी केंद्र सरकार भी कहती है, हमारा बैंक में अकाउंट होना बेहद जरूरी है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: माधव, पहली बारिश की खुशबू आखिर किसे पसंद नहीं होती। मिट्टी की सोंधी महक, ठंडी हवाएं और गरम गरम चाय, मन करता है कि इस मौसम का भरपूर आनंद लिया जाए।
1: बिल्कुल सलोनी, लेकिन यही मौसम अपने साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी लेकर आता है जिन पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है।
0: सही कहा दोस्तों, बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही हमें अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में नमी भरने से बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं, जिससे सर्दी जुकाम, वायरल बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना और बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, और ना सलोनी, साथ साथ बरसात में मच्छरों की संख्या पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए घर के आसपास पानी बिल्कुल ना जमा होने दे। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए छोटे बच्चों के ऊपर नेट का यूज करें ताकि उन्हें मच्छर ना खाएं, और स्पेशली आप भी फुल बाजू के कपड़े पहने और रिपेलेंट का यूज जो है वो जरूर करें।
0: माधव, एक और बात है जो हमें अक्सर नजरअंदाज हम कर देते हैं, वो है खाना पानी। बारिश के मौसम में बाहर मिलने वाले चटपटे खाने, गर्मा गर्म पकौड़े और ऐसी चीजें हमें खाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन जितना हो सके हमें थोड़ा सेफली खाना चाहिए, क्योंकि बाहर पनपते मच्छरों से हमें वायरल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और खाने पानी का जो मामला है ये वास्तव में बहुत डेंजरस है, बहुत जरूरत है हमें इसका ख्याल रखने के लिए। इसके साथ साथ ना लोगों की एक बारिश में एक गलतफहमी ये भी होती है कि भाई सर्दी में और बारिश जो बारिश का मौसम होता है ना प्यास कम लगती है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीटोसिन होता है उसकी रिएक्शन का रिजल्ट होता है। दरअसल हमें प्यास उतनी ही लगती है, बस हमें महसूस नहीं होती। इसलिए पानी की जो एक फिक्स अमाउंट है उसको जरूर पीते रहें, 2.5 से 3 लीटर पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी, तो उसे जरूर पिए
0: दोस्तों। और इसी के साथ, बारिश में भीगने का शौक हम सबको होता है, लेकिन बारिश में भीगने के मजे लेने के बाद जल्दी से जल्दी हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक हम गीले कपड़े पहन के उस मौसम का लुफ्त तो उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उससे जुड़ी परेशानियां होती है वो हमें रियलाइज कराती है बाद में कि हमने गलती करी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अब जो आनंद है उसको लेना भी ना भूलें, क्योंकि किसी ने कहा था कि जो जीवन है उसका जो रस है वास्तव में वो आनंद की तरह ही होता है ना। तो आप आनंद जरूर लें इस बारिश के अंदर, अगर आपको नहाने का शौक है तो जरूर से नहाएं, लेकिन प्रिकॉशंस का यूज करें, और बारिश की सौंधी खुशबू जो होती है दोस्तों उसे जरूर लें। अगर बारिश आ रही हो तो अगर आप घर के अंदर बैठे हो, रूम में बैठे हो, तो वो गलती ना करें, क्योंकि एक तो अपन मारवाड़ी, ऊपर से वैसे ही अपने यहाँ बरसात कम, तो ये जो है कुछ दिनों के मेहमान होती है, मैं दिनों की नहीं मैं कहूँगा सालों की मेहमान होती है। हमारे यहाँ साल में 2 से 3 बार बारिश होती है, मानसून तो यूं ही बदनाम है अपने यहाँ पे, इसलिए अब ये बात का बहुत ध्यान रखें कि जो थोड़ी बहुत बारिश इंद्र भगवान हमारे लिए कर रहे हैं इसमें जरूर जाएं, इसे देखें और बच्चों को दिखाएं कि देखो बेटा ऐसी होती है बारिश, क्योंकि हमारे वो बच्चे आने वाले 6-7 महीने तक बारिश देख नहीं पाएंगे। और अगर आपका कुछ अच्छा खाने का मन करे तो जरूर खाएं, मगर प्रिकॉशंस जो है वो जरूर बरतें। और रिसेंटली WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारा देश में लोगों में प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है सलोनी। अच्छा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे खाने में जो प्रोटीन रिच फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको जरूर इंक्लूड करें, चाहे वो दूध है, एग है, पनीर है, जो आपके मसाले हैं, दालें हैं, इनको हम ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें और अपनी बॉडी को जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो पूरी करें। बाकी दोस्तों, अगर बारिश है तो जरूर नहाइएगा।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की कूक लगी।

0: बीप तो मैंने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के

0: आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: माधव, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो और वो किसी सफल आईएएस अधिकारी से एक ही सवाल पूछे कि तैयारी कहाँ से शुरू करूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो मिलेगा जवाब वो क्या होगा?
2: सबसे कॉमन होगा कि जाओ एनसीईआरटी उठा लो।
1: बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन किताबों को हम स्कूल में सिर्फ होमवर्क पूरा करने के लिए पढ़ते थे, वही किताबें आगे चलकर बड़े बड़े सपनों की पहली सीढ़ी बन जाती है।
2: बिल्कुल दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। आज भी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है या शुरू करता है, तो सबसे पहले जिन किताबों की सलाह दी जाती है उनका नाम एनसीईआरटी होता है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
1: दोस्तों, इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1961 में, जब भारत सरकार ने इसको इस उद्देश्य से बनाया कि देश भर में गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह संस्था स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के साथ साथ शिक्षा पर शोध, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और नए पाठ्यक्रमों के विकास का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है।
2: और शायद यही वजह है कि एनसीईआरटी किताबें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि विषयों को समझने का नजरिया भी देती है। इनकी भाषा बहुत सरल होती है। हमारे डेली लाइफ जैसा एग्जांपल होता है, याद करो वो बूझो पहेली वाली जो आती थी, कितने प्यारे एग्जांपल्स होते थे दोस्तों वो।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी आईएएस अधिकारी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक बात जरूर सुनने को मिलती है कि मजबूत नींव के लिए एनसीईआरटी से बेहद अच्छी शुरुआत कोई नहीं हो सकती। इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो या अर्थशास्त्र, हर विषय की मूलभूत समझ इन्हीं पुस्तकों से विकसित होती है।
2: बिल्कुल, और इतने ही, आज जो डिजिटल युग है सलोनी, उसमें एनसीईआरटी की अधिकांश पुस्तकें ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप एनसीईआरटी ई बुक्स ऐप डाउनलोड करके उनका एक्सेस ले सकते हैं। विद्यार्थी ई बुक्स, ऑडियो वीडियो सामग्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी सीखने का दायरा अब डिजिटल भी हो चुका है और बहुत बड़ा भी हो चुका है।
1: तो दोस्तों, अगर आपके घर की अलमारी में आज भी एनसीईआरटी की कोई पुरानी पुस्तक किताब कहीं रखी मिल जाए, तो उसको उठाकर उसके पन्ने फिर से पलटकर देखिए। हो सकता है वही किताब आपको किसी नए विचार, नई प्रेरणा या फिर किसी पुराने सपने से दोबारा मिला दे।
2: बिल्कुल, और आप जब किताबें उठा के देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप वापस अपने स्कूल की दुनिया में हल्का हल्का लौटने लगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप स्टेशनरी शॉप पे जाएं और एकदम कड़क कड़क वो तो सौंधी सी खुशबू आती है ना सलोनी,
1: किताबों की
2: आप वो किताबें उठाएं अलमारी से जो आपकी 8th क्लास की 7th क्लास की 9th क्लास की किताबें हैं, जिसमें आप लोगों ने पीछे बहुत कुछ लिख रखे हैं, आगे कुछ लिख रखा है, बीच में कुछ लिख रखा है, अपने दोस्तों के नाम लिख रखे हैं, अपनी कहानियां लिख रखी है, या उन पेज पे वो बातें जो आपने अपने दोस्तों के साथ क्लास में टीचर के होने की वजह से लिख लिख के की थी, वो आपने उस पे लिख रखी है, उनको पढ़ें। और जब आप उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितनी खूबसूरत है जो समय गया था, वो कितना खूबसूरत था, और आप एक नॉस्टैल्जिक दुनिया में चले जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी आज आपको ये एडवाइस है कि आज आपको टाइम मिले तो अपनी पुरानी किताबों का एक बार रुख जरूर करें।

0: की बात कर रहे थे, लेकिन कभी हमने सोचा है कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई नई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले उसकी जानकारी कौन जुटाता है, कौन देशों के समय रहते सावधान करता है और उनसे मिलकर समाधान खोजने की कोशिश करता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है सलोनी। दोस्तों देखो, वैसे तो दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही प्रयासों का नेतृत्व करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अलग है।
0: दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। यही वजह है कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस संगठन का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और एक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिल सके।
1: और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि WHO सिर्फ बीमारियों का इलाज करने की बात नहीं करता, बल्कि बीमारियों को फैलने से पहले ही रोकने पर भी उतना ही जोर देता है। चाहे टीकाकरण का अभियान हो, स्वच्छता को बढ़ावा देना हो या फिर नई स्वास्थ्य चुनौतियों पर शोध ही क्यों ना करना हो, WHO कई देशों के साथ मिलकर इन सारे प्रोजेक्ट्स पर एक डाइवर्स तरीके से काम करता है।
0: और COVID-19 का टाइम तो हम सबको याद है, COVID-19 महामारी के दौरान WHO का नाम तो हम सब ने सुना था। उस समय इस संगठन ने दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश साझा किए, शोध को बढ़ावा दिया और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का बहुत प्रयास किया।
1: बिल्कुल, आज भी हमें वो याद है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। लेकिन दोस्तों WHO का काम केवल महामारी तक सीमित नहीं है, वो पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, तंबाकू नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों और जैसे अनेक क्षेत्रों में भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
0: माधव, मुझे WHO की एक और अच्छी बात वो लगती है कि हमेशा कहता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। यानी अगर मन स्वस्थ है, शरीर सक्रिय है और हमारा जीवन संतुलित है, तभी हम वास्तव में स्वस्थ कहलाते हैं।
1: बिल्कुल, और शायद यही बात है दोस्तों कि आज के युवाओं के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, आज फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित खान पान और सही जानकारी भी उतनी जरूरी है, क्योंकि एक जागरूक युवा ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है।
0: बहुत

0: कैच मी इफ यू कैन, ये स्लोगन हमने कई बार सुना है। और जो स्कूल में थे खेलते थे तो मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग गली में खेलते थे तो हम लोग दोस्तों कहते थे कि इफ यू हैव द काइंड ऑफ गट्स कैच मी इफ यू कैन। लेकिन दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान को भी सही टाइम पे कैच कर लें, क्योंकि अगर वो छूट जाता है तो फिर वो छूट ही जाता है। आइए हम जानते हैं उन सवालों के जवाब जो हमने आपसे पूछे थे। हमारा पहला सवाल आपसे था, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है?
1: और इसका सही जवाब है 19 जुलाई। और दूसरा सवाल था कि टेलीविजन दर्शकों को पसंद और किसी कार्यक्रम की लोकप्रियता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द टीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है
0: टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। उम्मीद है आपके दोनों जवाब सही होंगे, और अगर आपके जवाब सही नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कल का सूरज फिर आएगा और कल ये एक आकाशवाणी का कार्यक्रम भी दोबारा आएगा। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कल हो सकता है आपके जवाब सही

0: जाए, और अगर आपके इन चीजों में रुचि है तो एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से।
1: तो स्टेनोग्राफर के 162 पदों पर जोधपुर हाईकोर्ट ने वैकेंसी निकाली है और इसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026। फॉर्म 22 जुलाई से भरना शुरू हुई है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और समय से अप्लाई कीजिए।
0: बिल्कुल, और उम्मीद कोशिश करें कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसके ऊपर मन से अप्लाई करें, क्योंकि जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी, इच्छा शक्ति और सफलता की, अगर आपकी इच्छा शक्ति तीव्र होगी तो आप पाएंगे कि आप बेहद ही आसानी से इसे पा जाएंगे। दोस्तों, ख्याल रखें अपना, अपने आसपास के लोगों का, वनस्पतियों का और सभी प्राणियों का भी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें, प्रसन्न रहें। मिलेंगे आपसे कल फिर इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे थे माधव व्यास और सलोनी पारिक। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, रात 10 बजे हम आपको सुनाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम। कलाकार होंगे विदुषी श्रीमती बालमानी ईश्वर। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समय याद रखिएगा, रात 10 बजे। सुगम संगीत 7:45 पर, फिल्म संगीत 8 बजे, लोक संगीत 8:30 पर, समाचार संध्या आप सुनते हैं 8:45 पर, न्यूज एट 9 9 बजे, संसद के समक्ष मुद्दे। जी हां, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा रात 9:30 पर।

ग्रामीण जगत कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। चर्चा के विषय होंगे अन्नपूर्णा रसोई योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक पेड़ मां के नाम अभियान, अलावा इसके आप सुनेंगे लोकगीत लोक भजन और मौसम की जानकारी। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर बाद 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और आज आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनेंगे, यानी कि हम एक ही कलाकार के गाए फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर होंगे और जिले की चिट्ठी 6:40 पर, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार 6:45 पर। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले किए जाते हैं।

श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे संसद के समक्ष मुद्दे, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे आज रात 9:30 पर।

दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम। कलाकार होंगी विदुषी श्रीमती बालमानी ईश्वर। रात 10 बजे अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के समय 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों

0: के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा ने आज पोंडा में सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीटिंग है 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय 6:05 हो चुके हैं। यह समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हां, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम आपको एक ही कलाकार का नाम बाद में बताएंगे। पहले सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आवाज आपने पहचान ली होगी, क्योंकि ये आवाज हेमलता जी की कौन नहीं पहचानता है। भारतीय सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार पार्श्व गायिका। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी सुरीली सादगी भरी और शास्त्रीय संगीत से सजी आवाज का जादू बिखेरा। एक संदेश के बाद फिर सुनेंगे हेमलता जी को।
1: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, हेमलता जी की आवाज में एक खास तरह की मिठास और पवित्रता है। उनके कुछ गीतों की अगर हम बात करें, हालांकि हम इसी कार्यक्रम में आपको सुनवा भी रहे हैं, एक फिल्म थी अंखियों का झरोका, अंखियों के झरोके से। जी हाँ, ये 1978 में बनी और इसका जो गीत है, टाइटल गीत है, वो हम आपको सुनवाते हैं।

स्वतः हेमलता जी ने विशेष रूप से संगीत निर्देशन जो कि रविंद्र जैन साहब का था, उन्हीं के निर्देशन के अधिकतर गीत गाए। उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई ऐतिहासिक और मधुर गीत दिए। उनका जन्म 16 अगस्त 1954 में हुआ। हैदराबाद में एक मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखता था। उनका असली नाम लता भट्ट था।

आज आप सुन रहे हैं हेमलता जी के गाए कुछ फिल्मी गीत। हेमलता जी ने बहुत कम उम्र यानी कि लगभग 14 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में गाना शुरू कर दिया था। अधिकतर गाने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में, उनके गाए गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। आपने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, यशुदास जैसे महान गायकों के साथ युगल गीत गाए। लेकिन अभी तो हम एक ही कलाकार सुन रहे हैं, इसलिए युगल गीत फिर कभी एक ही कलाकार में हेमलता जी को फिर आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, यह स्वर था हेमलता का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आपने हेमलता को सुना। फिल्मों का नाम थे आप तो ऐसे ना थे, नैना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और अखियों के झरोंके से। ये थे फिल्मों के नाम और स्वर थे हेमलता के। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना। आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायक कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संसद के मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आज की सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए सहयोग करेंगे। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त करने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने और विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे निवेश प्रोत्साहन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को

0: राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए

0: उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले 2.5 वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और इनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता होने पर इन्हें रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव आज जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष से पिछले 24 घंटों में हुए सामान्य और सिजेरियन प्रसव और उनकी वर्तमान हालत के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव के बाद अगले 24 घंटे धात्री महिला की गहन निगरानी रखने और उसके पोषण का समुचित ध्यान रखने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों को आवश्यक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर देशलदान सहित केंद्र और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शी क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालोतरा में निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए श्रम विभाग की ओर से कल से 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें श्रमिकों के निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ये शिविर विभाग के स्थानीय कार्यालय में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार के फिर गति पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। आज दोपहर बाद कोटपुतली बहरोड में कुछ स्थान पर बारिश हुई। इससे आमजन को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। करौली जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिले भर में साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली स्थापना दिवस पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि ये जिला आस्था, इतिहास और प्राकृतिक वैभव की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कहा कि करौली निरंतर विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम हम सभी को हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करता रहेगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मियामी स्टेडियम में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 34 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से किया। गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता सेल्फी विथ रेलवे स्टेशन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री बिरला ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण किया और राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे। जिले में बीते दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी नामांतरण

0: में रूपांतरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला। वहीं नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में लोग भूमि रूपांतरण, आवासीय और व्यावसायिक पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेते नजर आए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पिछले दिनों विकसित भारत ग्राम योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम खिजूरी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चारागाह भूमि पर पीपल पूजन और पौधरोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आंध्र प्रदेश के तिरुपति से और ब्यावर के मसूदा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। पिछले दिनों सवाईमाधोपुर करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ और HPCL के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत HPCL के पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेयरी के MD सुरेश कुमार सेन ने बताया कि सवाईमाधोपुर और करौली जिले में HPCL के 75 पेट्रोल पंप हैं, जहां 25 पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद के आउटलेट, कियोस्क और बूथ लगाए जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार से दिशा निर्देशों के बाद परीक्षण कर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के कुसाई और खंडीप तक नहरों में भरपूर पानी आने के बाद क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखी गई। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन का काम 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है। इसके पहले जून महीने के अंतिम सप्ताह में भारी संख्या में पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। मॉनसून के दौरान रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने और वन्य जीव संरक्षण को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वन क्षेत्र में वन्य जीवों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से बाघ और अन्य वन्य जीवों की गणना का काम किया जा रहा है। वन्य जीवों की गणना और सुरक्षा के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र में 300 पॉइंट निर्धारित कर 600 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। जिले में मॉनसून की बेरुखी के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस का वातावरण बना हुआ है। बरसात नहीं होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं खरीफ की फसलों को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इसी के साथ सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रो मानसून सत्र कालसों सरकार काने हो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगड़ा दलाओं सदन ने सुचारू रूप चलाबारी अरज करी गई। नीति आयोग रे काने हो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य रिक्षणी माए थौड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलावारी लगातार मॉनिटरिंग करबा और सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया। और प्रदेश में मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है, आज 15 जिला में आंधी और बारिश रो अलर्ट। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। संसद रा कालसू सरुवेरिया मानसून सत्रों पहली आज सरकार संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक री अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करी। बैठक रे पछे मीडियाओं बातचीत रे दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षों अरज करी के वे मानसून सत्र री कार्यवाही ने सुचारू रूपों चलाबा माए इमदाद करे। श्री रिजिजू कया के संसद सगड़ारी है और इन दौरान सरकार न्यारा न्यारा विधेयक करेला और विधेयक पेश करेला। वना आज जताए के विपक्ष और सत्ता पक्ष सदस्य रचनात्मक रूपों इनमाए भाग लेवे। श्री रिजिजू कया के संसद जित्ती चोखी तरीकाओं काम करेला देश खातर

0: तुही चोखो रेवेला।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संसद रा मानसून सत्र में कई महताऊ विधायी मामला माथे चर्चा करिया जाबा और वाने पारित करिया जाबारू अंदाजो है। आज री सर्वदलीय बैठक रे मार्फत सरकार ने आस है के सगला राजनीतिक दल संसद री कार्यवाही सुचारू रूप में चलाबा में इमदाद करेला। ओ सत्र 13 अगस्त ताई चालेला। राज्य सरकारी कानियों करिया जा रिया निवेश प्रोत्साहन री कोशिशा ने राष्ट्रीय स्तर माथे सराहना मिली है। नीति आयोग री कानियों जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य रिक्षणी माए ठौड़ मिली है। बत्ती जानकारी समाचार कक्ष सु।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवा स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे ने मारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे रो शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय खातर गर्व री बात है। वे कहा कि मंगल पांडे री देशभक्ति और वीरता री गाथा देश री पीढ़िया ने प्रेरित करती रहवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रा नायक मंगल पांडे ने सिरदाऊ याद करता थका सोशल मीडिया पोस्ट में कया के मातृभूमि री स्वतंत्रता खातर मारो समर्पण और राष्ट्र प्रेम सगला माए हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित खातर जाग जगावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य अहलकारा ने हर एक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलावारी सूची तैयार करबा और आरी रोजाना मॉनिटरिंग करबारा निर्देश दिया है। वणा जरूरत पड़बा माथे रेफरल सुविधावा मुहैया कराबा ने कया। मुख्य सचिव आज जयपुर सु वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत प्रदेश री मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा वारी समीक्षा बैठक ने संबोधित करिया हा। वणा राज्य रा सगला मेडिकल कॉलेज रा अधीक्षका और स्त्री रोग विभागाध्यक्ष सु लारला 24 घंटा मायविया सामान्य और सीजेरियन जापा और वारी हाल रा स्वास्थ्य रा बारा माय जानकारी लेर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वणा प्रसव रे पछे आवता 24 घंटा धात्री महिला ने गहन निगरानी माय राखबा और वारा पोषण रो पूरो ध्यान राखबा ने कया। मुख्य सचिव सगला सपाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया है। बैठक माय चिकित्सा महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और दूजा ठावा अधिकारी मौजूद रिया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय रा अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया री अगुवाई में केंद्रीय दल आज विकसित भारत जी रामजी अधिनियम रा प्रभावी क्रियान्वयन खातर समीक्षा बैठक करी। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान समेत केंद्र और राज्य स्तरीय अहलकार भाग लेना। इन दौरान जिला में चल रही न्यारी न्यारी गतिविधियां और प्रगति माथे बत्ती चर्चा करी गई। अहलकारा ने योजनावारा प्रभारी प्रभावी संचालन पारदर्शी क्रियान्वयन और

ਵਜੋਂ ਬੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਫਾਇਦੋ ਪੁਗਾਵਾ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੋਤਰਮਾਏ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜੂਰਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰੋ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਾਢ ਬਾ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ ਕਾਨੀ ਉਕਾਲ ਸੂ ਤੀਨ ਦਿਨ ਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਵਿਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾਵੇਲਾ। ਇਨਮਾਏ ਮਜੂਰਾਰਾ ਨਿਰਸਤ ਪੰਜੀਅਨ ਔਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਆਵੇਦਨਾਂ ਰੋ ਨਿਸਤਾਰਨ ਕਰਿਓ ਜਾਵੇਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਿਰ ਮਹਿਕਮਾਰਾ ਥਾਨੀ ਕਾਰਿਆਲਮਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਲਾ। ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश में मानसून रे फेरू रफ्तार पकड़ बारा संकेत मिल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर आज प्रदेश में 15 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। अंदाजा रे मुजब पहली पूर्वी राजस्थान और उनरे पछे राज्य रा पश्चिमी हल्का माए बारिश यावक वह सके है। कालू कोटा भरतपुर जयपुर और अजमेर संभागरा कुछ एक हल्का माए बारिश वह सके है। इन बीच प्रदेश माए कटे कटे मेह बरसियो। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान सबूबत्तो 32 मिलीमीटर में दौसा जिला रा बसवा माए दर्ज करियो गयो। इनरे इतर अलवर धौलपुर बूंदी और कोटारा कुछ एक हल्का माए छितरायो में बरसियो। आज दोपहर पछे कोटपुतली बहरोड़ माए कुछ एक थोड़ा माते में बरसियो। इनसो आमजन ने तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे बादल छायोड़ा है। विभाग रे मुजब प्रदेश माए इन मानसून सीजन रे दौरान हाल तई सामान्य करीब 25% कम बिरखा भी है। करौली जिलो आज आपरोत्थापना दिवस मना रियो है। इन मौके जिला भर में साइकिल रैली स्वच्छता अभियान पौधारोपण और न्यारी न्यारी होना राखी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करौली रात थापना दिवस माथे जिला वासियां ने शुभकामनावां दी। सोशल मीडिया संदेश माए वे कया के ओ जिलो आस्था इतिहास और प्राकृतिक वैभव री अनुपम धरोहर है। वणा कया के करौली लगातार विकास समृद्धि और खुशहाली रा नया आयाम स्थापित करिया है। फीफा विश्व कप 2026 रो फाइनल मुकाबलो आज अर्जेंटीना और स्पेन रे बीच खेलू जावेला। भारतीय टीम रे मुजब ओ मैच न्यूयॉर्क रा न्यूजर्सी स्टेडियम माए रात के 12:30 सु शुरू वेला। इनसु पहली काल मियामी स्टेडियम माए तीजी ठोड़ खातर खेलिया गया मुकाबला माए इंग्लैंड फ्रांस ने 6-4 सु मात देर कांसारो तमगो जीत लियो। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रो खिताब जीत बा माथे पीवी संधू ने बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट माए डॉक्टर मांडविया कया के जापान ओपन रो खिताब जीत पावाली पहली भारतीय बनर सिंधु इतिहास रच दिनो। वे कया के वारी इन उपलब्धि माथे पूरा देश ने गर्व है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पढ़ानिया और मारा माता पिता ने ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीट री जांच खातर केवल असली ओएमआर ही जमा कराबारी राय दी है। फर्जी या एआई सु बनाई गई ओएमआर शीट देबामा थे कानूनी कार्यवाही वह सके है। इन खातर पढ़ानिया और मारा अभिभावका सु अर्ज करी गई है कि वे जांच खातर केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी वेला। ई सारो आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माते भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए विचार भेजा जा सके है। और अब आखिर माए खास खबरां एकल फेरू। संसद रो मानसून सत्र काल सु सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगला दलाओ सदन ने सुचारू रूप चलाबारी अर्ज करी गई। नीति आयोग री कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थोड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला वारी लगातार मॉनिटरिंग करबा और सफाखाना ने जरूर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया। और प्रदेश माए मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है। आज 15 जिला माए आंधी और बारिश रो अलर्ट। इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। मौसम के अनुसार स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सड़क पर चलते समय और विशेष तौर से वाहन चलाते समय हम यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: रोटी तो है ही, चपाती है, बिन सागे सागे दाल है जिकम हाँ। प्रोटीन मिले, सब्जी आपा जिकी भी हरी सब्जी है या अन्य प्रकार की सब्जी है, बिसु भी आपने खनिज लवण मिलिया करे, चावल है, और चावल नहीं है तो श्री अन्न जिके ना आपा बाजरो के अगर मेरी खिचड़ी है,
1: मोटे अनाज,
0: मोटे अनाज की खिचड़ी और सागे अचार।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात बता दी, और अच्छी बात करा जने भाई, अब कोई गरीब और मजदूर है तो वो केवल ई चक्कर में कि भाई पैसा को नहीं, तो कम पैसा में भी आप रो पेट भर सके और घर्रा लोगों ने भी राहत मिल सके भी यार।
0: बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा रो बढ़ावा देने ताई आ योजना जी की है, सांत्री योजना है।
1: बिल्कुल,
0: और सगला लोग इसमें खुश है।
1: बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात बता दी। अब अच्छी बात आ है कि भाई कोई बिरखारी बात कर रही है और पीने आ रही कोई पानी भरन जावे नहीं।
0: हाँ, तो बिल्कुल पारंपरिक गीत है मुल्तान खान और पार्टी रुगायड़ो, सुना
1: सुनाओ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: तो देखो राकेश भाई संदेशा सुनिया हाँ।
1: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: तो देखो संदेशा सुन लिया और संदेशों पहली आप मुल्तान खाओ और साथियार गैडो पणियारी सुन रिया। और देखो बात कर रिया हा आपा राकेश भाई कि
3: कोई भी आदमी भूखो नहीं सोए। सरकारी घणखरी योजनावां है जिकी आपने गांव में शहर में चल रही है।
0: बिल्कुल। और गांव शहर री योजना की बात करा तो देखो गांव पंचायत जी की है नी ईरो भी विकास करण सारू सरकार कई तरह री योजना में बनायोड़ी रखिया करे और भी पर अमल करिया करे। तो एक बीसी योजना है ग्राम पंचायत
3: विकास योजना।

0: जिकेन के दो अंग्रेजी में विकास योजना के दो बाहे और सरकार ये सारू भी बजट भी देवे और बीरो ग्राम सभा में जिको प्रस्ताव पारित करे बीरो भी अपने पूरो जायजो दिया करे
1: और हर साल ग्राम पंचायत द्वारा आप रे गांव रे विकास खातर आ योजना जिकी है बनाई छे और गांव में अलग अलग गांव री अलग अलग आवश्यकता हुए भी आवश्यकता अनुसार आज की योजना है इरी तैयारी हुए और ग्राम सभा री भागीदारी सु आ योजना जिकी है बने हर एक गांव री आवश्यकता रे अनुसार
0: बिल्कुल और गांव रा संसाधन जिका है बियान उपलब्ध संसाधन जिका हुए ग्राम पंचायत में भी अनुसार बीरो काम होया
1: करे योजना बद तरीके सु गांव रो विकास हो और उद्देश्य है और ग्रामीण भी आवश्यकता अनुसार विकास करे और चयन हुए में सरकारी योजनाओं रो सही लाभ लोगों तक पहुंचे इन खातर ई योजना में विशेष ध्यान रखी जाए
0: बिल्कुल देखो प्राथमिकता रे आधार पर विकास रा काम तय होया करे और बजट जी को है सरकारी योजनाओं रो जिको अलग अलग योजनाओं में आवे बिने किए खर्च करना है बीरी भी इर मायने योजना बने और योजना री स्वीकृति मिल जावे ग्राम पंचायत सुनबा ग्राम पंचायत रा सदस्य तो बीर बाद में इर पर अमल भी शुरू हो जाए
1: पूरे गांव रे लोगा सो चर्चा करे कि अपने गांव रे विकास खातिर अपन काई करनो है
0: बिल्कुल
1: अपने ग्राम में काई काई समस्याएं है काई काई आवश्यकताएं है ये सगला ने ध्यान राख पुरोर ग्राम सभा री बैठक होवे और पूरो सर्वेक्षण होने रे बाद प्राथमिकता रे आधार पर भी किसो अपन काम गांव में पहला करण है किसो विकास कार्य पहला बनाना है बीरी सूची बनाई जे और जिको भी बजट है अपने घन भी बजट ने काम में लेते हुए और सरकार ने अवगत कराते हुए आ अंतिम योजना तैयार कर परो और गांव रे विकास खातर एक तरह सो एक गति प्रदान करी जाए
0: प्रदान करे बिल्कुल देखो और की तरह रा काम करवा सका आपा कभी सड़क है नाली निर्माण है पेयजल व्यवस्था है कचरा प्रबंधन है स्ट्रीट लाइट जी की गलियां में जी की रोड लाइट जी के ने बोला बे लगाना है कोई स्कूल विकास है आंगनवाड़ी रो भवन बनाना है या स्वास्थ्य सेवा है ई तरह रा काम भी
1: और अब बार देखो मैं पानी चल रही है तो ई योजना रे माध्यम से वृक्षारोपण है आपने पर्यावरण रो संरक्षण है आपने ग्राम में गांव में तालाब है जोड़ बीड़ है जल संरक्षण है ई खातिर कई तरह रा काम हुए महिला और बाल विकास से जुड़ा काम है और ग्रामीण रोजगार और आजीविका से संबंधित भी काम है नी के स्वरोजगार कोई खोलना है तो ऐसी सारी सारी योजना वाला हिस्सा है
0: बिल्कुल और देखो इमें सबसे मोटी बात जी की है नी कि पूरे गांव रो भागीदारी रहे और भी गांव रे भागीदारी सु जब सगला ने ध्यान है का पर वो काम होना है तो गांव रे विकास में भी बड़ी मजबूती मिले और अब देखो अपन आगे बढ़ने में भी मजबूती चाहिए क्योंकि भाई लोग कोई एक और गीत लो सुनना चाह रहा है अफरोज बनर गयोड़ो है
1: लो भैया सुनो

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो तुलाराम भाई फिर आप संदेश सुनिया है और अब आप एक और योजना माथे बात करा और बाबी योजना जिकी अब आप पानी खेती बाड़ी सो जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
2: देखो आप बड़ी खासी पुरानी योजना है और शायद मने यार जट तक ध्यान आवे के महाराणा जी का प्रधानमंत्री है बनती ई तरह की योजना।
1: हाँ, 10-11 साल पुरानी, 10-11 साल पुरानी है,
2: यानी
1: जुलाई 2015 में आ योजना जी की है
2: चालू
1: होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इरो उद्देश्य भी देखो लांठो है। अब लांठो तो यह है कि कृषि सिंचाई योजना है तो हर एक खेत तक पानी पहुंचाना।
2: देखो खास बात जी की समझ में आवे नी कि खेती बाड़ी सारू जी की चीजा री जरूरत है वा है पानी और बिजली जरूरत होया करे और वा भी जरूरत का में एक जरूरत जी की है वा यदि पूरी हो जावे पानी आली तो देखो कितनी बड़ी जी की है वा राहत मिल जाए अगर आप रे किसान भाइयों ने।
1: तो भाइयों में आप बताना चाहूं कि खेत तक पानी पहुंचाने तो उद्देश्य है ही, मेरे सांसा के एक उद्देश्य वो भी है कि पानी रो अपने कुशलता पूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग लेना है, यानी पानी री एक एक बूंद रो उपयोग लेना है।
2: हाँ, तो मतलब इन योजना में कोई अलग तरह रो कोई सरकार योजना को नहीं बनाई, बस केवल इतो बतायोड़ा है कि पानी जी को है बिरु प्रबंधन जी के ने बोलिया कर है कि किया काम में लेनो कई तरह से अपन
1: पानी री व्यवस्था
2: किया कर सका बा बिल्कुल यूं सुचारू रूप से कर और बिने चाहे बा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लेवे तो या चाहे बा बले स्प्रिंकलर कहीं बोले बे
1: फवारा सिंचाई।
2: हाँ भी फवारा
1: सिंचाई में एक और है बरसात रे पानी ने अपने संरक्षण करनो
2: बिने भी बिल्कुल। देखो
1: जमीन रे में भौम जल जी को है बिरो लेवल ने ऊंचो लेनो।
2: बिल्कुल,
1: तो ए सगला उद्देश्य इमे है और इन सागे सागे कृषि उत्पादन और किसान आरे आय में वृद्धि करनी।
2: बिल्कुल, देखो
1: अभी एक लाइन जी की है, अभी जी की एक उद्देश्य जी को है वो इमेज जुड़ रहा है।
2: बिल्कुल, वो जुड़ना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाया करे कि देखो जब किसान रे फसल सारू बिने पानी मिल रही है और पानी मिल रही हो जाने फसल अच्छी होने री पूरी पूरी संभावना रही है तो किसान आरी आय भी बढ़े और किसान आरी बाकी जी की व्यवस्था भी यार अभी सुचारू व्यवस्था हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो जिकी भी योजना है नी बस सुचारू रूप से जदी चाल सके जद समाज रा हर तबके रा लोग इमें जुड़े
2: और
1: जागरूकता दिखावे
2: मेरी पूरी जानकारी रखे
1: और दूसरा भाइयों ने भी बतावे।
2: बिल्कुल, कई बार आ हुआ है बाके कोतले में गुड़ भांग ले बा नहीं होती।
1: नहीं, कल राम स्वरूप भाइयों बात हुई कि कई एड़ा गांव है जिके में जिका भी भाई बंधु है किसान भाई बंधु बे जागरूक ऊपर ऊपर गांव ने जागरूक कर दियो।
2: बिल्कुल,
1: और पूरो गांव रो गांव योजना से जरूर है।
2: हाँ,
1: और वो गांव पछे पूरे विश्व पटल पर कहो चाहे आपने भारत पर भी नाम ऊंचो आ जाए करे कि बैठे रे किसान प्रगतिशील किसान।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब प्रगति री बात है नी जने कार्यक्रम री प्रगति और करा और कोई टाबरिया सारू एक कोई लोरी है
1: लोरी
2: तो बस सुनाओ।
1: सुनाओ

0: कितना पक्षी रहे कितना कीट पतंगा रहे बिरबर हमारे पास सोच कौन सका और बियर सामंजस्य सुई धरती रो पर्यावरण है नी वो संतुलित रहे और पेड़ जी को है वो अपने प्राण वायु देवे
1: बिल्कुल
0: ऑक्सीजन
1: बिल्कुल
0: और ऑक्सीजन लगाने कोई कारखाना दुनिया में है कोनी कोई भी व्यापारी या व्यवसायी या उद्योगपति सो कोनी जो ऑक्सीजन का प्लांट बना दिया वो नहीं पेड़ सुई अपन ऑक्सीजन मिलेगा
1: और देखो आज की बात है नी कि भाई पेड़ सुई अपन ऑक्सीजन मिल सी तो एक चीज याद रख लो कि कम कम जिंदगी में एक पेड़ लगाना जरूरी है और अच्छी जगह कोई स्कूल है कोई पार्क है कोई और जगह देख लो बिन में लगाने
0: पूरा बड़ो करना है बिने पेड़ शिक्षा करना बहुत जरूरी है
1: और अब देखो और बात है कि भाई पेड़ा ने याद कर लिया प्रकृति ने याद कर लिया तो कोई राम जी ने भी याद कर
0: बिल्कुल सिंजर भगत है आप एक फोटो सो भजन सुना बोल सुहा राम राम हनुमान राणा रो गायड़ो लो सुनो

0: ई बोल सुआ राम राम हर जस रे साथे आज रे कार्यक्रम रो भगत होयो पूरो आप रे भाई तोला राम आ रे
1: राकेश कुमार जोशी ने देव सीख गणा गणा राम राम,
0: राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात के समय

ये स्वर था उमा गर्ग का। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, संसद के समक्ष मुद्दे ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा आज रात 9:30 पर। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रवि बांसुरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। कलाकार होंगी विदुषी श्रीमती बालमानी ईश्वर। ये कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा रात 10 बजे। आकाशवाणी बीकानेर का ये

0: भला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं, आई लव यू।

ये फिल्म थी तेरे बिन, आवाजें थी राहत फतेह अली खान, आशीष कौर और साथियों की।

जवानी, जी हाँ, ये था फिल्म का नाम। आवाज़ें थी आशा भोंसले और अमित कुमार की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात के समय

अभी आप सुन रहे थे कालूराम प्रजापति के स्वर में ये लोकगीत। आइए अब सुनते हैं किशन कुमार किराडू के स्वर में कागलिया लोकगीत।

0: ये स्वर था पद्माव्यास का। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोले मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के इस समय 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मौन

0: से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility. But in our house, it has become a regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट

0: किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे

0: अधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines.

मुकेश को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था कभी कभी। आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश को, फिल्म का नाम बेवफा सनम।

नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था बेवफा सनम। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म दिल एक मंदिर से। स्वर है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसपे मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कंडक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ

है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम,

0: उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस की नहीं पूरे देश की आवाज है। अगर

0: कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
1: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल के कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
0: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
2: मतलब एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे हैं।
0: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मानसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है, और

0: दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग है थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है, क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है, क्या हम अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार जिसमें RF रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे वो राजनीति है, क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है, क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है, क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो ईरान, वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए तो फिर कैसे होगा?

0: आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है आज भी मैं कर रहा हूं, सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उस पे इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दे? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18-23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको भुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ED पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और CBI का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ED पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और CBI को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका

0: तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है।
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी ना कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पे असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कम्पेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए किया और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा।
3: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन देते हैं 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है जिस प्रकार, जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयूज थे उनको जिस प्रकार सेल आउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसा समृद्ध हो, देश में जनता

0: की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
3: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी। एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, वो उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
6: ताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई है। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मधुरे में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक

0: एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर तिरुची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध है। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत है।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रवि बासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर हेल्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ रेनाउंड वोकलिस्ट मुसरी सुब्रमण्य अय्यर। इनिशियली शी लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम हर मदर श्रीमती सुशीला रामस्वामी। फर्दर ट्यूटिलेज वॉज फ्रॉम रेनाउंड म्यूजिशियन तिरुची श्री एस गणेशन। आफ्टर कम्प्लीटिंग म्यूजिक सीनियर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम त्रिशूर श्री राम वर्मा म्यूजिक स्कूल, Srimati Balamani joined Akashvani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashvani and is the recipient of several awards and accolades.
0: Aaj ke karyakram mein Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain violin par Srimati Parur M.K. Anantalakshmi, mridangam par श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव भारमा से कर रहे हैं। राग बहुधारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकंपनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. The concert begins with Brova Barama composed by Saint Tyagaraja in Rag Bahudari set to Adi Tal.

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम वराली राग और रूपक ताल में.
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम.

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रावन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपडि।
1: In the Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, you are listening to a vocal recital by Srimati Balamani Ishwar. She is accompanied by Parur Srimati M.K. Anantalakshmi on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the mridangam, and Udupi Shri S. Srikant on the kanjira. Listen now to Pakkala Nilapati, composed by Saint Yagaraja in Ra Karahara Priya, set to Mr. Chaputal.

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा खंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं रचना मनदिर कुहंबद। सिंधु भैरवी राग और आदितारिणी। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: दैट वॉज अ तनि आवर्तनम परफॉर्म बाय श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Shrimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankar Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

0: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। एक कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
1: Akashvani Bikaner ka ye dhola maru channel hai. Raat ke 11 bajne ko hai. Thodi hi der mein Delhi se Hindi mein samachar honge.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण

0: पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ. महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said,